0: चला गया। बस एक बच्चा जो था वो अंदर फंसा था, बस के बराबर बैक साइड पे वो बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, तो फिर हमने वो निकल नहीं पा रहा था, इसीलिए फिर हमने दो क्रेन्स मंगाए उसके लिए, जो लोकल हमने फटाफट हमारे आजू बाजू में जो डेवलपमेंट चालू है तो वहाँ से हमने वो क्रेन मंगा कर ले लिए। फिर वो क्रेन से उठा कर जब वो बस थोड़ी हिलने लग गई, तब फिर वो एक बॉडी अंदर से निकालने में कोशिश हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, बस उसे बचा नहीं सके। बाकी जितने जन थे उनको हमने वहाँ से रेस्क्यू कर दिया था और टाइम पर फायर वाले वगैरह पहुँचे थे। हमारे DCP साहब थे, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थे हमारे चेंबूर के, तो सबने मिलकर वहाँ पर जितना कर सके हमने हेल्प कर दी वहाँ पर।
1: दीपेश जी, क्या ये सच है कि आपने
0: बहुत से यहाँ पर पेड़ है वो पेड़ का
1: जी जी दीपेश जी, मेरा सवाल ये है कि क्या ये सच है कि आपने और इस इलाके के लोगों ने काफी बार शिकायत दर्ज की थी BMC के पास, अथॉरिटीज के पास, कि ये एक रिस्क हो सकता है, ये पेड़ जो है ये ट्रिम नहीं हुए हैं, बार बार शिकायत दर्ज हुआ था, क्या ये सच है?
0: जी, वहाँ पर वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उन्होंने भी वहाँ पर कंप्लेंट दी हुई थी, फिर हमारे स्थानिक XML है उनके पास भी ये कंप्लेंट दी थी BMC में, और यहाँ पर ये एक ही पेड़ नहीं, ऐसे बाजू के रोड में भी है, यहाँ पर सब पुराने पेड़ जो है जो ट्रिमिंग हुए नहीं है, और जो अभी ये 2 महीने पहले की बात है, 2 महीने पहले ही वहाँ पर जो सीमेंट कॉन्क्रीट रोड बनाया हुआ है उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वहाँ पर उन्होंने कुछ भी वो रूट्स के ऊपर ही पूरे कंक्रीट डाल के रखा था, तो अगर उनको पानी नहीं मिल रहा है तो फिर वो खराब होंगे।
1: बिल्कुल, इसका मतलब ये है दीपेश जी कि अगर अगर सिविक बॉडीज, अगर BMC ने कुछ काम किया था, अगर उन्होंने रिएक्ट किया, ये सारे कंप्लेंट्स जो सामने आए थे, अगर वो रिएक्ट किए तो ये एक जान बच जाती, आज विहान का देहांत नहीं होता।
0: जी जी,
1: तो अब आप क्या करेंगे? फिर से चिट्ठी लिखेंगे BMC को,
0: क्योंकि
1: एक छोटा सा बच्चा चला गया है। अब
0: कल हम एक रेसिडेंशियल करके कल हम वार्ड ऑफिसर को एक निवेदन देने वाले हैं इस बात पे, और दोबारा यहाँ पर ट्रिमिंग हो जाए ये हमारी मांग है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये रोड के बाजू में 3 स्कूल है, OLPS सेंट एंथनीज FX, उसके बाजू में कर्नाटक है, अपोजिट साइड में सरस्वती है, मतलब ये जो लेन है हमारा यहाँ पर ही नियर बाय 100 मीटर्स पे ही 3 से 4 स्कूल्स है, तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे आते जाते रहते हैं। दोबारा ये घटना ना हुए इसीलिए हमने वापस कल दोपहर 11 बजे का हमने टाइम लिया हुआ है DMC से, और उन्हें उनको हम ये निवेदन देने वाले हैं कि दोबारा ये ट्रिमिंग की जाए। बारिश तो अभी 2-4 दिन से चालू हो गई है, यहाँ पर ट्रिमिंग ही नहीं हो पा रही है, तो फिर सर ये तो घटना होने ही वाली थी।
1: मेरा आखिरी सवाल दीपेश जी, NDTV ने मुंबई के मेयर को कन्फ्रंट किया, उनको सवाल किया कि आपने क्यों एक्शन नहीं लिया, बार बार इतने कंप्लेंट्स दर्ज किए गए थे आपके डिपार्टमेंट में, लेकिन आपका डिपार्टमेंट ने रिएक्ट ही नहीं किया। उन्होंने बोला है NDTV को कि वो जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर कुछ नेग्लिजेंस या लैप्स हुआ है तो एक्शन लिया जाएगा। क्या आपको विश्वास है कि कुछ एक्शन लिया जाएगा या कुछ नहीं होगा?
0: देखिए, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक्शन ले लिया जाए, और अगर नहीं ले पाएंगे तो हम यहाँ के रेसिडेंशियल सारे मिलके वापस दोबारा मोर्चा निकालेंगे, क्योंकि एक जो बच्चा जिसका देहांत हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, वो आज एक लौता बेटा था, 11 साल का बच्चा था। कल ये ना होवे कि कोई हमारे घर से हो जाए घटना, कहीं आपके घर से हो जाए, ये जिम्मेदारी है वार्ड ऑफिसर्स की, गार्डन डिपार्टमेंट्स की, रोड डिपार्टमेंट की। यहाँ पर CC रोड्स बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो भी पूरा काम कंप्लीट नहीं है। आप अभी भी आप कल भी आ जाओगे दिन में तो भी मैं ये बताने के लिए रेडी हूँ कि कितने सारे रोड्स पे हर झाड़ के ऊपर इन्होंने सीमेंट कॉन्क्रीट डाल के रखा हुआ है, हर झाड़ पे।
1: जी जी,
0: तो रूट्स तो वहाँ के मरने ही है।
1: दीपेश जी, हमसे और NDTV
0: और
1: से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: कल से
1: जी जी, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि
0: थैंक यू
1: NDTV का

0: रिपोर्टिंग जारी रहेगा इस मुद्दे पर, इस स्टोरी पर हम ध्यान रखेंगे और हम जस्टिस लाएंगे विहान श्रीवास्तव के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद दीपेश। Meanwhile, something deeply disturbing is happening in the Siya Goyal case. Alongside the unfolding police investigation, viewer, a parallel campaign appears to have begun to soften the glare on the young woman accused of murdering her fiancé, Ketan Agarwal. It's a story that has taken the country by storm. It's happening at different levels, I don't know if you've noticed, by different stakeholders, all gently nudging the narrative away from the alleged crime and towards the accused herself, Siya Goyal, as a victim. Not a ruthless murderer, but a trapped young woman. Not a privileged girl who allegedly chose a horrifying solution, but the pitiable product of patriarchy. Yes, context matters, but this increasingly looks like a coordinated exercise to me in dilution, deviation, and distraction. Siya Goyal's family, understandably desperate to protect their daughter, is engaging in narrative shaping and trying to shift attention onto Ketan, the victim, and his family. Influencers on social media are finding everyone else to blame except Siya. Feminists are asking why the focus isn't on smashing the patriarchy instead of the accused. Commentators and columnists are intellectualizing the case with essays about marriage, youth culture, and social pressures. Perhaps some of those conversations deserve to happen at some point, but not at the cost of losing sight of the central question. A young man, Ketan, is dead. Investigators say this was a calculated murder. If the allegations are true, the choices that matter most are the ones Siya Goyal allegedly made and the questions that now confront her and her family, not everyone else.
1: इसमें जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए।
2: सख्त से सख्त मतलब क्या?
1: सख्त से सख्त फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा।
2: कल अगर ये अदालत में साबित होता है कि सिया ने ये किया है
1: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए, मैं तो बोलूंगा।
2: आप होशो हवास में?
1: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ। जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए।
2: तो क्या सिया चेतन दोस्त है, ये आपको कभी पता नहीं था? मैं फैक्ट चेक चाह रहा हूँ, व्यूअर्स हमारा पर्पस है फैक्ट चेक, पब्लिक के पास पहुँचे। क्या ये दोनों दोस्त थे, क्या आपको जानकारी थी?
3: दोस्त थे, वो भी जब मार्के एड की मैच थी उस टाइम तक जो दोस्त थे। बाद में जब बच्चे की सगाई होने के बाद मुझे नहीं लगा कि सिया कभी दोस्त बनी है या उसने कुछ, उनका दोनों का ऐसे कुछ चल रहा है।
2: रिलेशनशिप वाला नहीं था।
3: अगर बाय चांस रिलेशनशिप रहता था तो वो केतन से इतना प्यार नहीं करती थी, या केतन के फ़ोन नहीं उठाती थी, या केतन के साथ कभी उनको लगा कि वो सिया प्यार नहीं कर रही, तो वो मुझे पूछ सकते थे कि सिया केतन के फ़ोन नहीं उठाती या केतन से नहीं मिल पा रही है, कहीं जा नहीं रही है। ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं चार महीने में।
2: क्या आपको भी केतन को लेकर सही में दिल में उतना दुख है जितना उसके परिवार को हो रहा है?
4: दुख मुझे बहुत दुख है। मुझे केतन जी ने आज इतना प्यार दिया, मुझे इतना प्यार दिया मेरी फैमिली को। आज मेरे बेटा साहिल भी इतना प्यार नहीं देता था जितना प्यार मुझे केतन जी ने दिया। मैं आज उसके लिए तड़फ रही हूँ। मैं इसीलिए तो आपको वो शब्द बोल रही हूँ, अगर किसी ने भी उसको उसका किया हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए।
2: किसी ने भी,
4: जिसने भी किया हो तो भगवान को मंजूर मालूम है कि किसने किया है।
2: अगर आपकी बात को देखा जाए तो साथ में फिर सवाल उठता है कि वो एक क्रिकेट मैच वाला फोटो आ रहा है मार्केट यार्ड का जो आपने देखा, लेकिन मेहरामगढ़ फोर्ट में चेतन सिया गए थे, हमारे सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चल रहा है, ऐसे कुछ फोटो मैंने खुद देखे हुए हैं।
3: वो किस फ्रेंड की शादी में गए थे और वहाँ मिले थे वो लोग,
2: मतलब
3: उदयपुर में। हाँ,
2: रिलेशनशिप में थे?
3: नहीं, रिलेशनशिप में नहीं थे, फ्रेंड की शादी में गए थे और फ्रेंड की शादी अटेंड किया।
2: क्या ये आप लोगों को या केतन को पता था इस चीज़ का?
3: केतन को उसने बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है चेतन नाम का लड़का।
0: नाउ इट माइट बी अ स्ट्रेच टू से देयर इज अ कोऑर्डिनेटेड सेव सिया कैंपेन, अ नेफेरियस नैरेटिव, बट आई वांट यू टू जस्ट कंसीडर व्हाट इज हैपनिंग। नंबर वन, फ्रॉम द फैमिली, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स एज यू जस्ट सॉ टू कंफ्यूज, नैरेटिव सेटिंग ऑन द डॉटर एंड ऑल्सो सोइंग सीड्स ऑफ सिंपथी। Then you've got feminist activists who are peddling this entire patriarchy angle, suggesting that Siya Goyal was the one who was harassed. You've got influencers on social media, we don't know whether they're paid or unpaid, projecting Sia as a victim.

0: At the top of the hour, let's take you through devastating information coming in. Well, an 11-year-old boy, Vihan Srivastava, was killed and four other children were injured. The tragedy took place when a tree collapsed onto a school bus in Mumbai's Chembur area, prompting outrage over the alleged BMC negligence regarding previously flagged warnings. Now, the tragedy has left Vihan's mother in a state of profound shock and even denial, clutching his cricket bat while insisting that he needs to play. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has also ordered a probe and promised aid as officials plan to review the site amidst growing demands for accountability. Now, Municipal Commissioner Ashwini Bhire and Mayor Ritu Tavre will also be reviewing this very incident.
1: बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, एक बच्चे की जान चली गई है. अनफॉर्चुनेटली आप अंदर गई थी, काफ़ी समय आपने अंदर बिताया, क्या देखा आपने?
2: बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही पेनफुल है ये सब. मुझे खुद को यहाँ पे एज अ मेयर ने माँ के हिसाब माँ के तौर पे मैं बच्चे को देखा, मुझे बहुत बुरा लगा. माँ पिताजी स्पीचलेस थे, मैं क्या बात करूँ उनसे. लेकिन मैंने स्पॉट पे मैं गई थी, वहाँ पे ये जो यूनिवर्सल स्कूल की जो बस है, वैन है, वो जा रही थी और उसके अंदर 13 बच्चे थे. 12 बच्चों का रेस्क्यू किया, लेकिन एक बच्चा जो है वहाँ पे पूरा बहुत ही डेंजरस परिस्थिति में इंजर्ड हुआ और उसकी डेथ हो गई. यहाँ पे मैंने पालिका प्रशासन के पास से पूरा ब्यौरा लिया. रोड नंबर 11 पे जितने भी पेड़ है उसका ट्रिमिंग हुआ था क्या, तो उन्होंने हाँ बोला. मैंने खुद इस रोड का ये विज़िट किया था जब मैं सीसी रोड यहाँ का बन रहा था, तभी मैं खुद आई थी ये पूरा काम देखने के लिए. तो अगर मुझे अभी वहाँ पे पता चला कि स्थानिक लोगों ने इसके ऊपर कुछ कंप्लेंट दी थी कि ये डेंजरस जोन पे पेड़ है, अगर वो कंप्लेंट मिलती है और तो भी एमवीएस के अधिकारी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा तो निश्चित उनके ऊपर कार्रवाई होगी.
3: हम यहाँ पे रहते हैं, ये यहाँ पे सब ये लेन्स में बहुत सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, इसके वजह से बड़े बड़े खड्डे गड्ढों की वजह से ऑलरेडी वो जो रूट्स है वो ऑलरेडी

0: वीक हो गए हैं। दूसरा, यहाँ पे कंक्रीट का रोड बनाया गया है, कंक्रीट का रोड बनाते समय जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है, तभी वो काम करते समय जो पेड़ है वहाँ किससे उन्होंने बराबर काम नहीं किया है, उनकी रूट्स को काटा गया है और वीक किया, एम्प्यूट किया गया है, जिसकी वजह से ये पेड़ बहुत ही डेंजरस हुए हैं। और दूसरा ये यहाँ पे समस्या है कि यहाँ पे पार्किंग दोनों जगह पे होता है, तो जब ये बस आ रही थी तो वो गाड़ी नेगोशिएट नहीं कर पा रहा था और वो गाड़ी स्लो होने के बाद वो पेड़ तभी उसके ऊपर गिर गया और वो जो बड़ी दुर्घटना हुई है।
1: We're shifting focus to some breaking news coming in at this hour. Let's take you through it. Big revelation in the Ram Mandir Chanda Chori case, as rupees 89 lakhs has now been recovered from the accused Avinash Shukla. Now the trust has recovered money from Avinash Shukla and the trust had taken action against the accused before the FIR was registered. That's an important update now coming to light, as we're understanding that about 89 lakhs was recovered from the accused Avinash Shukla. The trust had earlier recovered this money from the accused and had even taken action against the accused before the FIR was filed in the case.

0: मुझे खुद को यहाँ पे एज अ मेयर ने माँ के हिसाब माँ के तौर पे मैं बच्चे को देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। माँ पिताजी स्पीचलेस थे, मैं क्या बात करूँ उनसे। लेकिन मैंने स्पॉट पे मैं गई थी, वहाँ पे ये जो यूनिवर्सल स्कूल की जो बस है वैन है वो जा रही थी और उसके अंदर 13 बच्चे थे। 12 बच्चों का रेस्क्यू किया लेकिन एक बच्चा जो है वहाँ पे पूरा बहुत ही डेंजरस परिस्थिति में इंजर्ड हुआ और उसकी डेथ हो गई। यहाँ पे मैंने पालिका प्रशासन के पास से पूरा ब्यौरा लिया। रोड नंबर 11 पे जितने भी पेड़ है उसका ट्रिमिंग हुआ था क्या, तो उन्होंने हाँ बोला। मैंने खुद इस रोड का इन्वेस्ट ये विजिट किया था जब मैं सीसी रोड यहाँ का बन रहा था, तभी मैं खुद आई थी ये पूरा काम देखने के लिए। तो अगर मुझे अभी वहाँ पे पता चला कि स्थानिक लोगों ने उसके ऊपर कुछ कंप्लेंट दी थी कि ये डेंजरस जोन पे पेड़ है, अगर वो कंप्लेंट मिलती है और तो भी एमवीएस के अधिकारी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा तो निश्चित उनके ऊपर कार्रवाई होगी।
1: हम यहाँ पे रहते हैं, ये यहाँ पे सब ये लेन्स में बहुत सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, इसके वजह से बड़े बड़े गड्ढों की वजह से ऑलरेडी वो जो रूट्स है वो ऑलरेडी वीक हो गए हैं। दूसरा, यहाँ पे कंक्रीट का रोड बनाया गया है। कंक्रीट का रोड बनाते समय जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है, तभी वो काम करते समय जो पेड़ है वहाँ किससे उन्होंने बराबर काम नहीं किया है, उनकी रूट्स को काटा गया है और वीक किया, एम्प्यूट किया गया है, जिसकी वजह से ये पेड़ बहुत ही डेंजरस हुए हैं। और दूसरा ये यहाँ पे समस्या है कि यहाँ पे पार्किंग दोनों जगह पे होता है, तो जब ये बस आ रही थी तो वो गाड़ी नेगोशिएट नहीं कर पा रहा था और वो गाड़ी स्लो होने के बाद वो पेड़ तभी उसके ऊपर गिर गया और वो जो बड़ी दुर्घटना हुई है।
2: We're shifting focus to some breaking news coming in at this hour. Let's take you through it. Big revelation in the Ram Mandir Chanda Chori case, as rupees 89 lakhs has now been recovered from the accused Avinash Shukla. Now the trust has recovered money from Avinash Shukla and the trust had taken action against the accused before the FIR was registered. That's an important update now coming to light, as we're understanding that about 89 lakhs was recovered from the accused Avinash Shukla. The trust had earlier recovered this money from the accused and had even taken action against the accused before the FIR was filed in the case.

0: claims about her relationship with both Ketan and the prime accused Chetan. Her parents insist that Sia and Chetan were just friends and say that Ketan also knew Chetan only as a friend. They claim that Sia never appeared to be distancing herself from Ketan. Meanwhile, Sia's brother says that she repeatedly told him that she wanted to marry Ketan and had even planned her pre-wedding shoot for weeks and never disclosed any relationship with Chetan.
1: में जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए.
2: सख्त से सख्त मतलब क्या?
1: सख्त से सख्त फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की
2: कल,
1: सजा.
2: कल अगर ये अदालत में साबित होता है कि सिया ने ये किया है
1: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए. मैं तो बोलूंगा
2: आप होशो हवास में.
1: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ. जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए.
2: तो क्या सिया चेतन दोस्त है ये आपको कभी पता नहीं था? मैं फैक्ट चेक चाह रहा हूँ व्यूअर्स, हमारा पर्पस है फैक्ट चेक पब्लिक के पास पहुँचे. क्या ये दोनों दोस्त थे, क्या आपको जानकारी थी?
3: दोस्त थे, वो भी जब मार्के एड की मैच थी उस टाइम तक जो दोस्त थे. बाद में जब बच्चे की सगाई होने के बाद मुझे नहीं लगा कि सिया कभी दोस्त बनी है या उसने कुछ उनका दोनों का ऐसे कुछ चल रहा है.
2: रिलेशनशिप वाला नहीं,
3: रिलेशनशिप वाला नहीं था. अगर बाय चांस रिलेशनशिप रहता था तो वो केतन से इतना प्यार नहीं करती थी या केतन के फ़ोन नहीं उठाती थी या केतन के साथ कभी उनको लगा कि वो सिया प्यार नहीं कर रही तो वो मुझे पूछ सकते थे.

0: The big story we are tracking this morning on NDTV. An ordinary school day ended in tragedy in Mumbai, where an 11-year-old boy, Vihan Srivastav, lost his life after a tree fell onto a moving school bus. Four other children were injured, and this tragedy took place when a tree collapsed onto a school bus in Mumbai's Chembur area. Residents, you must note, have alleged that concerns about the tree had been raised earlier. Those claims are now at the centre of scrutiny facing the Brihan Mumbai Municipal Corporation. But Vihan's family is struggling to come to terms with this loss. His mother, who's still in shock, has reportedly been clutching onto his cricket bat and saying her son needs to go and play. Chief Minister Devendra Fadnavis, meanwhile, has ordered an inquiry into the incident. Municipal Commissioner Ashwini Bhide and Mumbai Mayor Ritu Tavade are expected to inspect the site as investigators examine whether the tree had been identified as a potential hazard, whether complaints had been received, and whether preventive action was delayed. We've got crucial reactions lined up for you. Listen in.
1: बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, एक बच्चे की जान चली गई है. अनफॉर्चुनेटली आप अंदर गई थी, काफ़ी समय आपने अंदर बिताया, क्या देखा आपने?
2: बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही पेनफुल है ये सब. मुझे खुद को यहाँ पे एज अ मेयर ने माँ के तौर पे मैं बच्चे को देखा, मुझे बहुत बुरा लगा. माँ पिताजी स्पीचलेस थे, मैं क्या बात करूँ उनसे. लेकिन मैंने स्पॉट पे मैं गई थी, वहाँ पे ये जो यूनिवर्सल स्कूल की जो बस है, वैन है, वो जा रही थी और उसके अंदर 13 बच्चे थे. 12 बच्चों का रेस्क्यू किया, लेकिन एक बच्चा जो है वहाँ पे पूरा बहुत ही डेंजरस परिस्थिति में इंजर्ड हुआ और उसकी डेथ हो गई. यहाँ पे मैंने पालिका प्रशासन के पास से पूरा ब्यौरा लिया. रोड नंबर 11 पे जितने भी पेड़ है उसका ट्रिमिंग हुआ था क्या, तो उन्होंने हाँ बोला. मैंने खुद इस रोड का विजिट किया था जब मैं सीसी रोड यहाँ का बन रहा था, तभी मैं खुद आई थी ये पूरा काम देखने के लिए. तो अगर मुझे अभी वहाँ पे पता चला कि स्थानिक लोगों ने इसके ऊपर कुछ कंप्लेंट दी थी कि ये डेंजरस जोन पे पेड़ है, अगर वो कंप्लेंट मिलती है और तो भी एमवीएस के अधिकारी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, तो निश्चित उनके ऊपर कार्रवाई होगी.
3: हम यहाँ पे रहते हैं, ये यहाँ पे सब ये लेन्स में बहुत सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, इसके वजह से बड़े बड़े गड्ढों की वजह से ऑलरेडी वो जो रूट्स है वो ऑलरेडी वीक हो गए हैं. दूसरा, यहाँ पे कंक्रीट का रोड बनाया गया है. कंक्रीट का रोड बनाते समय जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है, तभी वो काम करते समय जो पेड़ है वहाँ से उन्होंने बराबर काम नहीं किया है, उनकी रूट्स को काटा गया है और वीक किया, एम्प्यूट किया गया है, जिसकी वजह से ये पेड़ बहुत ही डेंजरस हुए हैं. और दूसरा ये यहाँ पे समस्या है कि यहाँ पे पार्किंग दोनों जगह पे होता है, तो जब ये बस आ रही थी तो वो गाड़ी नेगोशिएट नहीं कर पा रहा था और वो गाड़ी स्लो होने के बाद वो पेड़ तभी उसके ऊपर गिर गया और वो जो बड़ी दुर्घटना हुई है, एक बच्चे की मौत हो गई है. अभी और कितने लोगों की मौत होगी? हम लोग यहाँ के रेसिडेंट हैं, हम बहुत ही डर में जी रहे हैं कि कब हमारे ऊपर कोई पेड़ गिरे. तो ये बीएमसी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके ध्यान देना चाहिए.
4: ये जो है ना, ये झाड़ दिखने में इतने बड़े हैं, ऊपर उनका बहुत बड़ा लीव ब्रांचेस है और उसके वजह से नीचे का जो है ना उसके लोड आता है और रूट्स उनके सब एक्सपोज हुए हैं. इनकी ऑडिट हुई नहीं है, दिस इज़ व्हाट आई कैन से. एडवाइस यही है, अगर आप अच्छे लगे तो करना ज़रूरी है, कि यहाँ से बच्चे लोग बहुत जाते हैं, यहाँ पर स्कूल भी आगे. वो झाड़ है ना जो टिल्ट हुआ है, उसको आपको 10 फुट 20 फुट तक कट करना है.
5: टोटल 12 बच्चे थे यहाँ पर, उसमें एक लास्ट में एक अब भी डेड बॉडी निकाली थोड़ी देर पहले.
6: अच्छा, जो लास्ट वाला बच्चा निकाला वो डेड बॉडी निकाला आपने? यस. कितने समय से फंसा हुआ था?
5: ये करीबन एक 2-2.5 बजे की बात है.
6: 2-2.5 बजे तो कैसे पता चला, यानी आपके सामने
5: एक कॉल आने लगे? हम लोग रहते यहाँ पर ही है, 11th रोड के एंड पे रहते हैं. जब पता चला तब हम लोग ने कॉल किए, पुलिस वगैरह, हाँ, लोकल पुलिस वगैरह आई थी. हाँ. फिर हम लोग ने क्रेन्स वगैरह मंगा के फिर पेड़ को निकाल लिया, क्योंकि पेड़ भारी हैवी था,
6: बहुत बड़ा था.
5: हाँ, क्योंकि 2 फराना तो लगेगा.
7: हम जांच करेंगे, उसमें अगर कोई दोषी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे. और ये जो इंसिडेंट घटी है वह वापस नहीं हो मुंबई में, इसके लिए हम पूरे निर्देश देंगे और इस पूरा जो घटनाक्रम है उसकी चौकसी करेंगे.
8: ये बहुत दुर्दैवी चीज़ है, इसके बारे में महापालिका को इंक्वायरी की जांच के लिए आदेश दिए जाएंगे. मैं मुंबई के महापौर से बात करूंगा, डिटेल में उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. उसमें जो दोषी रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी. और दूसरी बात, जो बच्चों को गंभीरता से जख्मी हुए उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज मिलने के लिए कोशिश की जाएगी. मुंबई के पालक मंत्री माननीय एकनाथ राव जी शिंदे साहब से भी बात कर और मुंबई के सभा के पालक मंत्री आशीष शेलार जी से बात कर ये क्यों हुआ और इस तरीके की जांच होकर इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इस तरीके की हम बात करें।
9: आपको पता होगा कि स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव जानबूझकर लेट किए गए कोर्ट का नाम डालकर। सरकार ने चुनाव लिए अपने व्यवस्था के आधार पर, तब तक विकास के नाम से इन लोगों ने, ये सरकार ने, महावती सरकार ने बीएमसी को लूटा, वहाँ का पूरा खजाना लूटा। बाद में इलेक्शन लगाए, इलेक्शन लगाने के बाद में इलेक्शन में जो दावे किए वो दावे भी अब इनके झूठ सामने आ रहे।
0: Abhishek Awasthi is tracking this probe very closely. He joins us live at the moment. Abhishek, take us through what investigators have established so far and any official confirmation that complaints or warnings had been received before this incident took place.
10: See, definitely after the incident, the mayor of Mumbai has already ordered a probe into this entire matter. Yesterday, she was present at the spot and later met the family of the deceased child, and more importantly, why it is happening at the time of monsoon. Because when we BMC is claiming that monsoon preparedness activities were done, whether it is desilting of nalas, trimming of trees across Mumbai, but if such incidences definitely expose that, you know, what you speak is not what the reality is all about. And what we understand as the claims being made by several residents out here, where they are making a point that, you know, earlier certain complaints were already sent to the local administration here regarding these trees which are dangerous in nature and that can cause harm, and that exactly what happened. But we have to understand, one is the probe that has been ordered, and another is whether these claims been made by the resident, are there any complaints, whether they were acted at that given point of time so that this incident could have been avoided. So these are the things which needs to be taken into consideration. Action what was taken then when the complaint was given is something that needs to be inquired also, along with the major probe that has been ordered by the mayor. In fact, what we understand that inquiry has already started, and in due course of time we'll come to know exactly the reason behind. Despite the trees being trimmed, what we understand is whether the audit of these trees were done before the monsoon or not, because definitely it is very important at this given point of time when orange alert, red alert, certain situations are there in the city of Mumbai when such incident happened. So the homework of BMC was done or not is something that is can be questioned, and who is accountable for the loss of life. Ultimately, a young 11-year-old has succumbed to this injury, and we will definitely continue to ask the question that who exactly is responsible and who should be made accountable for this loss of life. Back to you.
0: We'll continue to monitor this probe very closely with you, Abhishek, as always. Thanks so much for that update. Do stay on with us. Well, it is tragic. Vihan Srivastav was killed after a tree collapsed onto his school bus in Mumbai's Jembur, injuring other children as well. Residents claimed that they had repeatedly alerted the Brihanmumbai Municipal Corporation about the condition of trees in the area. They had sought pruning or removal of those they considered hazardous. They also alleged that a similar incident had occurred there in the past too. Now, those allegations are expected to form part of this official inquiry, which is already underway. But at this stage, it is for investigators to establish whether complaints were indeed received, whether the tree had been inspected, whether there was any failure to act despite warning signs. The Maharashtra government, as Abhishek Awasthi highlighted, has ordered a probe, and senior civic officials are reviewing the site as well. But for Vihan's family, however, those answers come after an irreparable loss. For the families watching this morning, the questions are painfully familiar. If warnings had indeed been raised, why was the risk not addressed before a child lost his life? That is what the inquiry will now have to answer. Abhishek is tracking all the finer details for us. Abhishek, take us through the condition of those children that were injured and what the BMC has said in its preliminary response to us.
10: See, definitely, as we understand, that incident took place around 3 o'clock in the afternoon. Definitely after the school, what we understand, they were returning back to home. and this incident took place on the road number 11 of Chembur, right next to a heritage building, and a huge tree fell on the bus which was taking a turn at that given

0: नहीं करना चाहिए।
1: सबसे सख्त मतलब क्या?
0: सक्सेस फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा,
1: और
0: फांसी की सजा कड़ी
1: कल
0: से
1: अगर ये
0: कड़ी
1: अदालत में
0: सजा,
1: साबित होता है कि सिया ने ये किया है,
0: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए, मैं तो बोलूँगा।
1: आप होशोहवास में ये?
0: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ, जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए।
1: तो क्या सिया चेतन दोस्त है ये आपको कभी पता नहीं था? मैं फैक्ट चेक चाह रहा हूँ व्यूअर्स, हमारा पर्पस है फैक्ट चेक पब्लिक के पास पहुँचे। क्या ये दोनों दोस्त थे, क्या आपको जानकारी थी?
2: दोस्त थे वो भी, जब मार्के आड़ की मैच थी उस टाइम तक जो दोस्त थे। बाद में जब बच्ची की सगाई होने के बाद मुझे नहीं लगा कि सिया कभी दोस्त बनी है या उसने कुछ, उनका दोनों का ऐसे कुछ चल रहा
1: मतलब
2: है।
1: रिलेशनशिप वाला नहीं?
2: रिलेशनशिप वाला नहीं था। अगर बाय चांस रिलेशनशिप रहता था तो वो केतन से इतना प्यार नहीं करती थी, या केतन के फ़ोन नहीं उठाती थी, या केतन के साथ कभी आप उनको लगा कि वो सिया प्यार नहीं कर रही, तो वो मुझे पूछ सकते थे कि सिया केतन के फ़ोन नहीं उठाती या केतन से नहीं मिल पा रही है, कहीं जा नहीं रही है। ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं 4 महीने में।
1: क्या आपको भी केतन को लेके सही में दिल में उतना दुख है जितना उसके परिवार को हो रहा है?
3: दुख मुझे बहुत दुख है। मुझे केतन जी ने आज इतना प्यार दिया, मुझे इतना प्यार दिया मेरी फैमिली को। आज मेरे बेटा साहिल भी इतना प्यार नहीं देता था जितना प्यार मुझे केतन जी ने दिया। मैं आज उसके लिए तड़फ रही हूँ। मैं इसीलिए तो आपको वो शब्द बोल रही हूँ, अगर किसी ने भी उसको उसका किया हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए।
1: किसी ने भी,
3: जिसने भी किया हो तो भगवान को मंजूर मालूम है कि किसने किया है।
1: अगर आपकी बात को देखा जाए तो साथ में फिर सवाल उठता है कि वो एक क्रिकेट मैच वाला फोटो आ रहा है मार्केट यार्ड का जो
2: हाँ
1: आपने
2: जी,
1: देखा, लेकिन मेहरामगढ़ फोर्ट में चेतन सिया गए थे, हमारे सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चल रहा है, ऐसे कुछ फोटो मैंने खुद देखे हुए हैं।
2: वो किसी फ्रेंड की शादी में गए थे और वहाँ मिले
1: अच्छा,
2: थे वो लोग
1: मतलब
2: उदयपुर
1: आप
2: में। हाँ
1: रिलेशनशिप में थे
2: नहीं,
1: ऐसा?
2: रिलेशनशिप में नहीं थे, फ्रेंड की शादी में गए थे और फ्रेंड की शादी अटेंड किया।
1: क्या ये आप लोगों को या केतन को पता था इस चीज़ का?
2: केतन को उसने बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है चेतन नाम का लड़का।
4: ऑलराइट, The investigation into Ketan Agarwal's murder has entered a more complex phase after fresh statements from Sia Goyal's family appear to now differ. Police allege that Sia Goyal and co-accused Chetan Chaudhary were in a relationship and conspired to kill Ketan because they wanted to be together. However, Sia's family now maintains that Chetan Chaudhary was just a friend and say they never saw any indication that Sia wanted to call off her marriage to Ketan Agarwal. Her brother, meanwhile, has offered a more nuanced account, you must note. He says he was aware that Sia knew Chetan, but claims she repeatedly assured him that she wanted to marry Ketan Agarwal and had ended any relationship with Chetan. He says he therefore did not inform the family. Also, as investigators recreated the alleged murder of Ketan Agarwal at Lohagarh Fort and uncovered fresh details, the victim's mother renewed her demand for the harshest punishment, saying that although Sia also has a mother, she wants the death penalty for both the accused if they are found guilty. So why question Ketan Agarwal's family now? These are competing versions that investigators will now have to test against digital evidence, witness statements and forensic findings. Saurabh Gupta has the latest revelations for us and the key takeaways too. He joins us live at the moment. Saurabh, what do police officials have to say about the family's latest statements and how they differ from the police's theory of motive?
5: You know, that is something that's a very important part of the investigation, because in any criminal investigation, motive is primary. There has to be an established motive for committing a crime, otherwise it gets very difficult to prove guilt. So the motive part is most important. Now, here, of course, what many are observing is that perhaps there is an effort to protect Sia Goyal, and there is, of course, this whole effort to create a facade of innocence that obviously many are questioning, because they say that whatever choice Sia Goyal made, in case, of course, the police can conclusively prove that you know, she was the person who was the conspirator and along with you know, Chetan Chaudhary, managed to actually pull off this crime and execute this crime, in that case the police will have to not only prove motive, they will have to prove also in a foolproof way that the accused were present, that they were involved in the crime, and that's going to be the whole purpose of the investigation. And at this point, Sia Goyal's family have been making statements, but they've been making statements selectively to selective news portals, and many suspect that that's an effort to protect Siya Goyal from whatever allegations

0: retirement, records relating to transplant cases remained locked inside, delaying treatment for several patients awaiting surgery. The room has now been opened and another doctor, Dr. Sanjeev Sharma, has taken charge.
1: वो रूम लॉक्ड नहीं है, उसकी की आ गई है और वो रूम खुल गया है। तो रूम लॉक्ड होने से कोई पेशेंट के ट्रीटमेंट में फर्क पड़ रहा हो ऐसा नहीं है। पेशेंट का तो जो रेगुलर ट्रीटमेंट जो एंड स्टेज रीनल डिजीज वाले पेशेंट्स का होता है, जो उनका न्यूट्रिशन है, जो एंटीबायोटिक्स है, जो उनका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जो डायलिसिस है, वो चल रहा है। उसकी वजह से नहीं, कमरा ये था कि कमरा बंद है इसलिए ट्रांसप्लांट हो गया। कमरा बंद होने से तो ट्रांसप्लांट नहीं होता है।
0: Following questions over the delays, hospital authorities have reassigned the pending transplant cases. For Jayanti Lal and Anita, that has brought a glimmer of hope. Doctors have now assured them that if their medical parameters remain stable, Anita's transplant could be performed within the next 2 weeks.
2: Doctor ne sab kagaz sab jama kara diye, humne to puri report sab jama kar diye, hamari dono ki match kidney mein aa rahi hai. Bas 15 March se doctor sahab retired ho gaye, uske baad se nahi file atak gayi, baki thoda zyada.
0: Inside the same dharamshala is Nitin Saini, who has travelled from Uttarakhand. His sister has been found to be a matching donor. While waiting for surgery, Nitin continues to undergo dialysis with his mother and sister accompanying him to the hospital every day.
3: अभी अटको भी है ना, फाइल सभी की है, हमारी नहीं सभी की है।
4: फाइल
3: काम अब चल रहा है वैसे।
4: फाइल में हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे हो गए कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सिर्फ यूरोलॉजी की थोड़ी सी टेस्ट चल रहे हैं, वो रह गए हैं, वो हमारे 10-12 दिन में पूरे हो जाएंगे।
5: और आपका जो डॉक्टर है उसका ट्रांसफर रिटायर हो गए?
4: हाँ, वो रिटायर हो गए।
5: तो आप दूसरे डॉक्टर से कराएंगे या क्या करेंगे?
4: नहीं, हमें तो
5: डॉक्टर के रिटायर होने से एक महीना लेट हो गए ना?
4: हाँ, एक महीना लेट हो गया। हाँ, एक महीना लेट हो गया।
0: For 35-year-old Mahender Saini, the wait has been even more devastating. His father was to donate a kidney, but as the transplant was delayed, Mahender's health worsened. He is now admitted to the ICU unit.
6: Doctor saab nahi the to kahan se hoga?
7: Ab
6: after doctor saab dekhenge.
7: Dusra doctor saab dekhenge. To wo doctor saab retire ho gaye the kya?
6: Retire ho gaye, taala lag raha tha kamre
7: ko. Aur inke abhi kya problem ho gayi hai?
6: Ab to paani bhara hua
7: hai pet mein. वैसे महेंद्र जी को क्या problem है?
0: For patients suffering from end-stage kidney disease, time is not just measured in days. It is measured in dialysis sessions, borrowed money, days spent away from home, and sometimes in declining health. In Jaipur, Harsha Kumari Singh, NDTV.
8: As always, the news and updates continue right here on NDTV 24/7. We're slipping into a quick break. Back in a moment.

0: एंड परफॉर्म करना 70 इससे बहुत ही अच्छा था. बट कहते हैं कि और उस कार्यक्रम जिसके हम प्रोग्राम की बात करें अगर 7th मई की, तो सेम डे तो मिल रहा था जैसे सभी लोग बात कर रहे हैं इन्वॉल्व होके, इस तरह से बोल भी रहा था मैम ये वाला गाइए ये गाइए इस तरह का. और क्योंकि वो अपनी सिस्टर यानी विशाल जी की जो बहन है, अपनी बुआ के फंक्शन में आए थे वो लोग अपने पूरे परिवार के साथ, तो मायरेदार्स थे वो, मायरा लेकर आए थे. सो वहाँ पे उससे रिलेटेड जो गीतों की फरमाइशें थी सब बात हो रही थी. लेकिन लास्ट में केतन की मुझे जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ, मुझे आज भी याद है जो उसका एक्सप्रेशन था, मुझे बोला कि रितु मैम यू आर अमेजिंग, लिटरली बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, बहुत सुंदर प्रोग्राम आपने किया है, और प्लीज मैम आप लंच ले लीजिए. और ये बात उसने मुझे 3 से 4 बार बोली. मीन्स कई बार ऐसा होता है ज्यादा गाने के बाद में हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं उसके बाद में, बट वो जब तक वहां वेट कर रहा था कि हम मैं आपको लेके जाऊं और आप प्लीज लंच कीजिए. सो वो चीज एक ये इंसिडेंट के बाद में मुझे ऐसा कुछ चीजें ऐसी होती कि रह रह के फिर याद आती है कि केतन की वो एक जो लास्ट की जो बातें थी वो मैं भुला ही नहीं पा रही थी.
1: राइट रितु जी, यू मेंशनड आपने 3 इवेंट्स के लिए वहां पे परफॉर्म किया. यू हैव नथिंग बैड टू से अबाउट द फैमिलीज. You have also confirmed that there was a jovial atmosphere of celebration prior to the scheduled wedding. Jo mahol aapne us function mein dekha, kya aapko laga tha at any point ki dono parivar shaadiyon ko lekar puri tarah se ekmat the?
0: Ji bilkul ekmat the, bahut khush the. Siya ke mummy papa bhi function mein hai jo dance kar rahe hain, nach rahe hain.
1: And आपके हिसाब
0: से खुश थे? Even बहुत और भी बहुत सारी वीडियोस हैं. देखिए ये तो हम एक पार्ट है, मतलब
1: of course.
0: जो क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ तो हमें थोड़ा डालना ही रहता है. और एक पुराना वीडियो भी है मैंने जो डाला हुआ है वो भी काफी वायरल है, उस पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं देख रहे हैं. तो ये जस्ट 7th मई के बाद का ही था जो मैंने डाला था. सो वहां भी आप देख सकते हैं कितने खुश हैं और दोनों परिवार डांस कर रहे हैं. इवन ये अग्रवाल परिवार के साथ ही आया था, गोयल परिवार, वो शादी में जो उन्होंने अटेंड की थी क्योंकि विशाल जी की सिस्टर ऑन सिस्टर है, उन्हीं की बेटी की शादी थी.
1: मिस शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट द मोमेंट. Ms. Sharma is the person that posted that video. It does not have any evidentiary value by itself in this criminal investigation, but it has gained attention because it comes at a time when investigators are examining the nature of Sia's relationship, Sia's family's relationship with both Ketan Agarwal and also co-accused Chetan Chaudhary. And after differing accounts have emerged from a family about what they knew before the murder. We'll continue to track all the finer details as far as this probe is concerned, but it is intensifying. Currently, police have taken Chetan Chaudhary again to Lohagarh Fort for the gate analysis and to recreate the crime scene. He was taken to Lohagarh Fort dressed in the exact same clothing as the person seen in the CCTV footage to match the way his body moves with the CCTV footage details do. Meanwhile, NDTV has accessed this video that you just saw that Ritu Sharma posted from the 7th of May. She mentioned that she has performed at 3 events prior to the scheduled wedding where she had no sense of any sort of disagreement, any sort of tense environment, any sort of stress that came to the fore as far as both the families were concerned. Sia's family, meanwhile, has said that Sia and Chetan Chaudhary were just friends, and they say that Ketan Agarwal also knew Chetan only as a friend. But Sia's brother has said she repeatedly told him she wanted to marry Ketan, had planned a pre-wedding shoot for weeks, and never disclosed any relationship with Chetan Chaudhary, who is currently being taken to Lohagarh Fort again to recreate the crime scene and for a further gate analysis. Just listen in to what her family said then and what they're saying now.
2: इसमें जो भी आरोपी है, उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए.
3: सख्त से सख्त मतलब क्या?
2: सख्त से सख्त फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा. फांसी की
3: कल अगर कल अगर ये अदालत में साबित होता है कि सिया ने ये किया है
2: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए. मैं तो बोलूंगा
3: आप होशो हवास में.
2: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ. जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए.
3: तो क्या सिया चेतन दोस्त है ये आपको कभी पता नहीं था? मैं फैक्ट चेक चाह रहा हूँ व्यूअर्स, हमारा पर्पज है फैक्ट चेक पब्लिक के पास पहुँचे. क्या ये दोनों दोस्त थे, क्या आपको जानकारी थी?
4: दोस्त थे वो भी, जब

0: Moving on to crucial news. An ordinary school day ended in tragedy in Mumbai, where an 11-year-old boy, Vihan Srivastav, lost his life after a tree fell onto a moving school bus. Other children were injured, but this tragedy took place when a tree collapsed onto a school bus in Mumbai's Chembur area. And residents have alleged that concerns about the tree had been raised earlier, and those claims are now at the centre of the scrutiny facing the Brihanmumbai Municipal Corporation. Vihan's family, meanwhile, is struggling to come to terms with the loss. His mother still in shock. She's reportedly been clutching onto his cricket bat and saying her son needs to go out and play. Chief Minister Devendra Fadnavis, meanwhile, has ordered an inquiry into this incident. Municipal Commissioner Ashwini Bhide and Mumbai Mayor Ritu Tavre are expected to inspect the site as investigators examine whether the tree had been identified as a potential hazard, whether complaints had been received, and whether preventive action was delayed. We've got crucial reactions lined up for you. Listen.
1: बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, एक बच्चे की जान चली गई है. अनफॉर्चुनेटली आप अंदर गई थी, काफ़ी समय आपने अंदर बिताया, क्या देखा आपने?
2: बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही पेनफुल है ये सब. मुझे खुद को यहाँ पे एज अ मेयर ने माँ के तौर पे मैं बच्चे को देखा, मुझे बहुत बुरा लगा. माँ पिताजी स्पीचलेस थे, मैं क्या बात करूँ उनसे. लेकिन मैंने स्पॉट पे मैं गई थी, वहाँ पे ये जो यूनिवर्सल स्कूल की जो बस है, वैन है, वो जा रही थी और उसके अंदर 13 बच्चे थे. 12 बच्चों का रेस्क्यू किया, लेकिन एक बच्चा जो है वहाँ पे पूरा बहुत ही डेंजरस परिस्थिति में इंजर्ड हुआ और उसकी डेथ हो गई. यहाँ पे मैंने पालिका प्रशासन के पास से पूरा ब्यौरा लिया. रोड नंबर 11 पे जितने भी पेड़ है उसका ट्रिमिंग हुआ था क्या, तो उन्होंने हाँ बोला. मैंने खुद इस रोड का विजिट किया था. जब मैं सीसी रोड यहाँ का बन रहा था तभी मैं खुद आई थी ये पूरा काम देखने के लिए. तो अगर मुझे अभी वहाँ पे पता चला कि स्थानिक लोगों ने इसके ऊपर कुछ कंप्लेंट दी थी कि ये डेंजरस जोन पे पेड़ है, अगर वो कंप्लेंट मिलती है और तो भी एमवीएस के अधिकारी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, तो निश्चित उनके ऊपर कार्रवाई होगी.
3: हम यहाँ पे रहते हैं, ये यहाँ पे सब ये लेन्स में बहुत सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, इसके वजह से बड़े बड़े गड्ढों की वजह से ऑलरेडी वो जो रूट्स है वो ऑलरेडी वीक हो गए हैं. दूसरा, यहाँ पे कंक्रीट का रोड बनाया गया है. कंक्रीट का रोड बनाते समय जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है, तभी वो काम करते समय जो पेड़ है वहाँ किससे उन्होंने बराबर काम नहीं किया है, उनकी रूट्स को काटा गया है और वीक किया, एम्प्यूट किया गया है, जिसकी वजह से ये पेड़ बहुत ही डेंजरस हुए हैं. और दूसरा ये यहाँ पे समस्या है कि यहाँ पे पार्किंग दोनों जगह पे होता है, तो जब ये बस आ रही थी तो वो गाड़ी नेगोशिएट नहीं कर पा रहा था और वो गाड़ी स्लो होने के बाद वो पेड़ तभी उसके ऊपर गिर गया और वो जो बड़ी दुर्घटना हुई है, एक बच्चे की मौत हो गई है अभी. और कितने लोगों की मौत होगी? हम लोग यहाँ के रेसिडेंट हैं, हम बहुत ही डर में जी रहे हैं कि कब हमारे ऊपर कोई पेड़ गिरे. तो ये बीएमसी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके ध्यान देना चाहिए.
4: ये जो है ना, ये झाड़ दिखने में इतने बड़े हैं, ऊपर उनका बहुत बड़ा लीव्स ब्रांचेस है और उसके वजह से नीचे का जो है ना उसके लोड आता है और रूट्स उनके सब एक्सपोज हुए हैं. इनकी ऑडिट हुई नहीं है, दिस इज़ व्हाट आई कैन से. एडवाइस यही है, अगर आप अच्छे लगे तो करना ज़रूरी है, कि यहाँ से बच्चे लोग बहुत जाते हैं, यहाँ पर स्कूल भी आगे. वो झाड़ है ना जो टिल्ट हुआ है उसको आपको 10 फुट 20 फुट तक कट करना है.
5: टोटल 12 बच्चे थे यहाँ पर, उसमें एक लास्ट में एक अब भी डेड बॉडी निकाली थोड़ी देर पहले.
6: अच्छा, जो लास्ट वाला बच्चा निकाला वो डेड बॉडी निकाला आपने?
5: यस.
6: कितने समय से फंसा हुआ था?
5: ये करीबन एक 2-2.5 बजे की बात है.
6: 2-2.5 बजे तो कैसे पता चला, यानी आपके सामने
5: एक कॉल आने लगे? हम लोग रहते यहाँ पर ही है, 11th रोड के एंड पे रहते हैं. जब पता चला तब हम लोग ने कॉल किए, पुलिस वगैरह, लोकल पुलिस वगैरह आई थी. फिर हम लोग ने क्रेन्स वगैरह मंगा के फिर पेड़ को निकाल लिया, क्योंकि पेड़ भारी हैवी था,
6: बहुत बड़ा था.
5: हाँ, क्योंकि दो फराना तो लगेगा.
7: हम जांच करेंगे, उसमें अगर कोई दोषी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और ये जो इंसिडेंट घटी है वह वापस नहीं हो मुंबई में, इसके लिए हम पूरे निर्देश देंगे और इस पूरा जो घटनाक्रम है उसकी चौकसी करेंगे.
8: तो ये बहुत दुर्दैवी चीज़ है, इसके बारे में महापालिका को इंक्वायरी की जाँच के लिए आदेश दिए जाएंगे. मैं मुंबई के महापौर से बात करूँगा, डिटेल में उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. उसमें जो दोषी रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी. और दूसरी बात, जो बच्चों को गंभीरता से जख्मी हुए उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज मिलने के लिए कोशिश की जाएगी. मुंबई के पालक मंत्री माननीय एकनाथ राव जी शिंदे साहब से भी बात कर और मुंबई के सभा के पालक मंत्री आशीष शेलार जी से बात कर ये क्यों हुआ और इस तरीके की जांच होकर इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इस तरीके की हम बात करें।
9: आपको पता होगा कि स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव जानबूझकर लेट किए गए कोर्ट का नाम डालकर। सरकार ने चुनाव लिया अपने व्यवस्था के आधार पर, तब तक विकास के नाम से इन लोगों ने, ये सरकार ने, महायुति सरकार ने बीएमसी को लूटा, वहाँ का पूरा खजाना लूटा। बाद में इलेक्शन लगाए, इलेक्शन लगाने के बाद में इलेक्शन में जो दावे किए वो दावे भी अब इनके झूठ सामने आ रहे।
0: Sujata is tracking all the finer details for us. She joins us live this morning. Sujata, break down for us, what have investigators established so far, and any official confirmation that complaints or any warnings had been received before this tragic incident?
10: Well, yes. The Garden Department of the BMC is under the scanner to answer these questions, because before every monsoon, it is a standard operating procedure from the department to ensure that the Horticulture Department as well as the junior level officer inspects every tree from the ground in their physical presence. But that did not happen, because of which this particular uprooted tree, it fell onto a kid and the apathy killed a bus, a child who was on the bus. Now, the CM here had inquired about the incident to Mayor Ritu Tavre and also has taken information and ordered an inquiry to find out the culprit, because the road on which this tree was located, it was constructed recently, and while road construction is underway, soon after the work completes, it is the responsibility of the contractor to ensure that the tree is in good condition, and if there is any sort of a trunk decay, then that needs to be informed so that tree either could be trimmed or it could be amputated or removed thereof. But that never happened. And which is why an inquiry has been ordered. And like you see, Vihan's parents, they are inconsolable. His mother is holding on to a bat, saying that Vihan has gone to play and he'll come one day. So this has caused a major trauma to the parents. The rest of the kids are under treatment. Four of them are at Zen Hospital, where the treatment is underway. Serious injuries have happened to these young kids. And also one of the reasons why the accident couldn't be averted was because on both the sides of the road, there were cars parked. And because of which there was very little way for the bus to pass from that way. If the cars wouldn't have been parked there, which is of course not a rule on that very road, then the bus could have moved easily and the tree could have fell on the road, but that did not happen. And unfortunately, it resulted into a death of one kid, 11 year old. And henceforth, we know that the mayor too has assured people that action will be taken and whoever will be responsible will be dealt with utmost seriousness. So we need to see what exactly is done in the case. But yes, there has been a complaint that has been registered with the State Human Rights Commission that how a young kid was killed because of the negligence of the BMC officials. And as we see every monsoon, there's often such occurrence that results into human loss and also of property. So for that very purpose, we know that the BMC, though this year has got a mayor, they'll initiate action accordingly. And it will be important to see that which all authorities face the heat of this entire incident and how is it that the BMC prevents such incidents and accidents happening. Absolutely. In the future.
0: We'll be tracking those questions with you, demanding these answers. As always, Sujata, thanks so much. Well, from Maharashtra, let's turn

0: The father and the mother both have spoken on the issue, clarifying that Chetan was just a friend, at least according to their knowledge, according to what they knew of their relationship.
1: आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए।
2: सख्त से सख्त मतलब क्या?
1: सख्त से सख्त फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की
2: कल
1: सजा, कड़ी से
2: कल अगर
1: कड़ी
2: ये अदालत
1: सजा,
2: में साबित होता है कि सिया ने ये किया है,
1: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए। मैं तो बोलूँगा
2: आप होशो हवास में ये
1: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ, जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए।
2: तो क्या सिया चेतन दोस्त है ये आपको कभी पता नहीं था? मैं फैक्ट चेक चाह रहा हूँ व्यूअर्स, हमारा पर्पस है फैक्ट चेक पब्लिक के पास पहुँचे। क्या ये दोनों दोस्त थे, क्या आपको जानकारी थी?
3: दोस्त थे वो भी, जब मार्के अड की मैच थी उस टाइम तक जो दोस्त थे। बाद में जब बच्चे की सगाई होने के बाद मुझे नहीं लगा कि सिया कभी दोस्त बनी है या उसने कुछ, उनका दोनों का ऐसे कुछ चल रहा है।
2: रिलेशनशिप वाला नहीं,
3: रिलेशनशिप वाला नहीं था। अगर बाय चांस रिलेशनशिप रहता था तो वो केतन से इतना प्यार नहीं करती थी, या केतन के फ़ोन नहीं उठाती थी, या केतन के साथ कभी आप उनको लगा कि वो सिया प्यार नहीं कर रही, तो वो मुझे पूछ सकते थे कि सिया केतन के फ़ोन नहीं उठाती या केतन से नहीं मिल पा रही है, कहीं जा नहीं रही है। ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं 4 महीने में।
2: क्या आपको भी केतन को लेके सही में दिल में उतना दुख है जितना उसके परिवार को हो रहा है?
4: दुख मुझे बहुत दुख है। मुझे केतन जी ने आज इतना प्यार दिया, मुझे इतना प्यार दिया मेरी फैमिली को। आज मेरे बेटा साहिल भी इतना प्यार नहीं देता था जितना प्यार मुझे केतन जी ने दिया। मैं आज उसके लिए तड़फ रही हूँ। मैं इसीलिए तो आपको वो शब्द बोल रही हूँ, अगर किसी ने भी उसको उसका किया हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए।
2: किसी ने भी,
4: जिसने भी किया हो तो भगवान को मंजूर मालूम है कि किसने किया है।
2: अगर आपकी बात को देखा जाए तो साथ में फिर सवाल उठता है कि वो एक क्रिकेट मैच वाला फोटो आ रहा है मार्केट यार्ड का जो आपने देखा, लेकिन मेहरामगढ़ फोर्ट में चेतन सिया गए थे, हमारे सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चल रहा है, ऐसे कुछ फोटो मैंने खुद देखे हुए हैं।
3: वो किसी फ्रेंड की शादी में गए थे और वहाँ मिले थे वो लोग,
2: मतलब
3: उदयपुर में। हाँ,
2: रिलेशनशिप में थे?
3: नहीं, रिलेशनशिप में नहीं थे, फ्रेंड की शादी में गए थे और फ्रेंड की शादी अटेंड किया।
2: क्या ये आप लोगों को या केतन को पता था इस चीज़ का?
3: केतन को उसने बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है चेतन नाम का लड़का।
0: That was a family of Sia, but NDTV has exclusively spoken to singer Ritu Sharma, who has posted a video of Ketan dancing with Sia's parents. The video was from a function that took place in May, where Ritu was performing. She says she hasn't she's been part of the family functions and celebrations. In fact, she performed at 3 of their family functions, and this function was the wedding function of a cousin of Ketan Agarwal. Let's listen in to what Ritu had to say.
5: देखिए, ऐसे तो फैमिली फंक्शन में उनके पहले भी 2 कर चुके हूँ, ये तीसरा फंक्शन था 7th मई को, और हर फंक्शन में केतन क्योंकि घर का बच्चा है तो इससे पहले बहन की शादी में डांस करना एंड परफॉर्म करना सब तरह से बहुत ही अच्छा था। बट कहते हैं कि और उस कार्यक्रम जिसके हम प्रोग्राम की बात करें अगर 7th मई की, तो सेम डे तो मिल रहा था, जैसे सभी लोग बात कर रहे हैं इन्वॉल्व होके, इस तरह से बोल भी रहा था, मैम ये वाला गाइए ये गाइए इस तरह का। और क्योंकि वो अपनी सिस्टर यानी विशाल जी की जो बहन है, अपनी बुआ के फंक्शन में आए थे वो लोग अपने पूरे परिवार के साथ, तो मायरेदार थे, वो मायरा लेकर आए थे। सो वहाँ पे उससे रिलेटेड जो गीतों की फरमाइशें थी सब बात हो रही थी, लेकिन लास्ट में केतन के मुझे जैसे एक प्रोग्राम खत्म हुआ, मुझे आज भी याद है जो उसका एक्सप्रेशन था, मुझे बोला कि रितु मैम यू आर अमेजिंग, लिटरली बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, बहुत सुंदर प्रोग्राम आपने किया है, और प्लीज मैम आप लंच ले लीजिए। और ये बात उसने मुझे 3 से 4 बार बोली, मीन्स कई बार ऐसा होता है ज्यादा गाने के बाद में हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं उसके बाद में, बट वो जब तक वहां वेट कर रहा था कि हम, मैं आपको लेके जाऊं और आप प्लीज लंच कीजिए।
0: Well, the questions that are being raised at this particular point in time is why has the family made a U-turn on the relationship as far as Sia and Ketan is concerned? Then we have the family claiming that Sia was confused as to, were they really aware of the lover Chetan? Did they think that he's just a friend, or could they tell that he was more than a friend? Do remember that she kept mentioning him to Ketan Agarwal as well. Her phone was always busy. Parents, obviously, did they have an idea as to what was really going on? Sia's family demands the death sentence, and why are they questioning the family of Ketan now? That is the big question that

0: Very tragic news coming out of Maharashtra. An 11-year-old boy in Mumbai, Vihan Srivastav, was killed while four other children were injured. The tragedy took place when a tree collapsed onto the school bus in which they were travelling in Mumbai's Chembur area, prompting outrage over the alleged BMC negligence regarding previously flagged warnings. The tragedy has left Vihan's mother in a state of profound shock and in complete denial. Clutching onto his cricket bat, she is insisting that he needs to go out to play. Then we have Maharashtra's Chief Minister, Devendra Fadnavis, who has gone ahead and ordered a probe and promised aid as officials plan to review the site amidst growing demands for accountability. We have the Municipal Commission. This is the Municipal Commissioner Ashwini Bhide and Mayor Ritu Tavre, who have now also gone in order to review the incident. Let's listen in to what the Mayor had to say.
1: बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, एक बच्चे की जान चली गई है. अनफॉर्चुनेटली आप अंदर गई थी, काफ़ी समय आपने अंदर बिताया, क्या देखा आपने?
2: बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही पेनफुल है ये सब. मुझे खुद को यहाँ पे एज अ मेयर ने माँ के हिसाब माँ के तौर पे मैं बच्चे को देखा, मुझे बहुत बुरा लगा. माँ पिताजी स्पीचलेस थे, मैं क्या बात करूँ उनसे. लेकिन मैंने स्पॉट पे मैं गई थी, वहाँ पे ये जो यूनिवर्सल स्कूल की जो बस है, वैन है, वो जा रही थी और उसके अंदर 13 बच्चे थे. 12 बच्चों का रेस्क्यू किया, लेकिन एक बच्चा जो है वहाँ पे पूरा बहुत ही डेंजरस परिस्थिति में इंजर्ड हुआ और उसकी डेथ हो गई. यहाँ पे मैंने पालिका प्रशासन के पास से पूरा ब्यौरा लिया. रोड नंबर 11 पे जितने भी पेड़ है उसका ट्रिमिंग हुआ था क्या, तो उन्होंने हाँ बोला. मैंने खुद इस रोड का इन्वेस्ट ये विजिट किया था, जब मैं सीसी रोड यहाँ का बन रहा था तभी मैं खुद आई थी ये पूरा काम देखने के लिए. तो अगर मुझे अभी वहाँ पे पता चला कि स्थानिक लोगों ने इसके ऊपर कुछ कंप्लेंट दी थी कि ये डेंजरस जोन पे पेड़ है, अगर वो कंप्लेंट मिलती है और तो भी एमवीएस के अधिकारी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा तो निश्चित उनके ऊपर कार्रवाई होगी.
3: हम यहाँ पे रहते हैं, ये यहाँ पे सब ये लेंस में बहुत सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, इसके वजह से बड़े बड़े खड्डे गड्ढों की वजह से ऑलरेडी वो जो रूट्स है वो ऑलरेडी वीक हो गए हैं. दूसरा, यहाँ पे कंक्रीट का रोड बनाया गया है. कंक्रीट का रोड बनाते समय जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है, तभी वो काम करते समय जो पेड़ है वहाँ से उन्होंने बराबर काम नहीं किया है, उनकी रूट्स को काटा गया है और वीक किया, एम्प्यूट किया गया है, जिसकी वजह से ये पेड़ बहुत ही डेंजरस हुए हैं. और दूसरा ये यहाँ पे समस्या है कि यहाँ पे पार्किंग दोनों जगह पे होता है, तो जब ये बस आ रही थी तो वो गाड़ी नेगोशिएट नहीं कर पा रहा था और वो गाड़ी स्लो होने के बाद वो पेड़ तभी उसके ऊपर गिर गया और वो जो बड़ी दुर्घटना हुई है, एक बच्चे की मौत हो गई है. अभी और कितने लोगों की मौत होगी? हम लोग यहाँ के रेसिडेंट हैं, हम बहुत ही डर में जी रहे हैं कि कब हमारे ऊपर कोई पेड़ गिरे. तो ये बीएमसी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके ध्यान देना चाहिए.
4: ये जो है ना, ये झाड़ दिखने में इतने बड़े हैं, ऊपर उनका बहुत बड़ा लीव्स ब्रांचेस है और उसके वजह से नीचे का जो है ना उसके लोड आता है और रूट्स उनके सब एक्सपोज हुए हैं. इनकी ऑडिट हुई नहीं है, दिस इज़ व्हाट आई कैन से. एडवाइस यही है, अगर आप अच्छे लगे तो करना ज़रूरी है, कि यहाँ से बच्चे लोग बहुत जाते हैं, यहाँ पर स्कूल भी आगे. वो झाड़ है ना जो टिल्ट हुआ है उसको आपको 10 फुट 20 फुट तक कट करना है.
5: टोटल 12 बच्चे थे यहाँ पर, उसमें एक लास्ट में एक अब भी डेड बॉडी निकाली थोड़ी देर पहले.
6: अच्छा, जो लास्ट वाला बच्चा निकाला वो डेड बॉडी निकाला आपने? कितने समय से पता हुआ था?
5: ये करीबन एक 2:30 बजे की बात है.
6: 2:30 बजे तो कैसे पता चला, यानी आपके सामने
5: एक कॉल आने लगे? हम लोग रहते यहाँ पर ही है, 11th रोड के एंड पे रहते. जब पता चला तब हम लोग ने कॉल किए, पुलिस वगैरह, लोकल पुलिस वगैरह आई थी. फिर हम लोग ने क्रेन्स वगैरह मंगा के फिर पेड़ को निकाल लिया, क्योंकि पेड़ भारी हैवी था,
6: बहुत बड़ा था.
5: हाँ, क्योंकि दो फराना तो लगेगा.
0: Now, an 11-year-old boy has lost his life, and this has raised fresh questions over student safety and the enforcement of transport norms. The opposition has come down heavily on the Mahayuti government, with Congress leader Nana Patole alleging that the government is least bothered about public issues, while the Shiv Sena UBD faction has demanded strict action against everyone responsible for the tragedy. Responding to the criticism is a Maharashtra minister who has assured the harshest punishment for those found guilty. He said the BMC will conduct a detailed probe into the incident and promised that no culprit will be saved.
7: इसके ऊपर जो पेड़ गिरी, 10 बच के घायल, एक का मृत्यु हुआ, ये सारी घटनाओं को जो जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कार्रवाई करो. पहली बारिश हो या दूसरी बारिश हो, बारिश की पूर्व तैयारी करते समय वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर, गार्डन सुपरिटेंडेंट, एई मेंटेनेंस, इन्होंने जब जांच करते हैं पूरे वार्ड में, तब ये सारी स्थिति देखनी चाहिए थी। वहाँ के लोगों ने बहुत बार कंप्लेंट की थी कि ये झाड़ काटो, तब तक भी लोगों ने ध्यान न दिया और इसके कारण आज दुर्घटना हुई।
8: प्री मानसून की जो तैयारी है बम्बई में करना पड़ता है वो नहीं की गई। आपको लगा, पता चला होगा कि पहले ही पानी में, कम बारिश में बम्बई पूरी डूब गई। वैसे ही आज जो घटना हुई है वो घटना ये सरकार की, बीजेपी और महायुति की सरकार के पाप के वजह से हुई है।
9: बीएमसी की जिम्मेदारी है जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स है या ओपन स्पेसेस है उस पर अगर झाड़ बहुत बढ़ गए हैं तो उसकी छाटनी करते रहना, और प्री मॉनसून स्पेसिफिकली इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाते हैं। अगर इस तरीके की लापरवाही बीएमसी के तरफ से हुई है तो वो छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक, अगर ये जो भी है उसमें कौन कौन दोषी है, कौन किसकी किसकी जिम्मेदारी आती है, किसकी किसकी जवाबदारी ठहरवना देना, ये पूर्ण माहिती, मतलब ये पूरी तरीके से एक SIT फॉर्म की जाए। इसके ये झाड़ के ऊपर किसी ने कंप्लेन किया था क्या, कभी इसकी छाटनी हुई भी है क्या, क्या बीएमसी के तरफ से पूरी तरीके से दुर्लक्ष किया गया है, ये पूरी एक जवाबदारी निश्चित करनी पड़ेगी।
10: नहीं देखते उसका कारण क्या है वो पता करना चाहिए। वो तो नैसर्गिक आपत्ति हो सकती है, क्योंकि पेड़ ऐसे अपने आप गिरा या उसको किसी काम के लिए काटा जा रहा था, वो देखना पड़ेगा और पूरी जांच के बाद ही इसमें कौन दोषी है वो समझ में आएगा। लेकिन ऐसी घटनाएं फिर से ना हो इसलिए हम कदम उठाएंगे,
3: हम जांच करेंगे, उसमें अगर कोई दोषी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और ये जो इंसिडेंट घटी है वो वापस नहीं हो मुंबई में, इसके लिए हम पूरे निर्देश देंगे और इस पूरा जो घटनाक्रम है उसकी चौकसी करेंगे।
7: तो ये बहुत दुर्दैवी चीज़ है, इसके बारे में महापालिका को इंक्वायरी की जांच के लिए आदेश दिए जाएंगे। मैं मुंबई के महापौर से बात करूंगा, डिटेल में उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसमें जो दोषी रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और दूसरी बात, जो बच्चों को गंभीरता से जख्मी हुए उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज मिलने के लिए कोशिश की जाएगी। मुंबई के पालक मंत्री माननीय एकनाथ राव जी शिंदे साहब से भी बात कर और मुंबई की सभा के पालक मंत्री आशीष शेलार जी से बात कर ये क्यों हुआ और इस तरीके की जांच होकर इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इस तरीके की हम बात करें।
0: मुंबई नाउ टू अम्बाला। A 20-hour-long rescue operation has ended in a heartbreak. The 4-year-old boy was pulled out of a 220-foot-deep open borewell and declared dead. The child, identified as Nirveer Singh, was rescued at about 3:40 in the morning, to be precise, following this multi-agency operation that began on Tuesday morning. He was immediately rushed in an ambulance to the civil hospital in Ambala, where doctors declared him dead. The incident took place at about 6:30 in the morning on Tuesday in that village of Ambala, where the boy was in the field when he noticed this open borewell. Out of curiosity, he tried to lean over to see what was inside, causing him to slip and fall. Let's just get you break news coming in, and this is in regard to Karnataka, and there is that language war that has erupted, the language war that reignites in the state of Karnataka. But there we can see the pro-Kannada outfits vandalizing and dismantling a Hindi signboard that is in this area in Bengaluru, alleging that Hindi imposition, as far as is something that is a matter of concern. These people, the Kannada pro-Kannada outfits that you can see on your screen there, are vandalizing and dismantling this signboard. Why? Because it wasn't in their language, wasn't even in English, it was in Hindi instead. Ritu, my colleague, joining us to get us details. Ritu, where exactly is this happening? What are the demands that are being made? And this is in regard to, you know, that third language imposition. And we've had that issue as far as, the local language is concerned, that would perhaps be the third language and not the first two.
11: Well, very true. You see, this is the incident that has come to fore from Bengaluru itself, where that you have the pro-Kannada groups now alleging that this particular signboard was installed there without seeking any kind of a permission from the civic body, and that too apparently being in Hindi has really eyed them. Now, that's what has made them to be very angry about this whole fact and being up in the arms. There you can see how that they have vandalized as well, trying to blacken that whole of the Hindi signboard too. So, of course, you see, this is not the first incident that we are seeing being from Bengaluru, but multiple such incidents taking place often here in the state as well. Remember, the GBA, the civic body here in the state, has also following all these kind of a protest and also brought in a specific rule as well, that the maximum of that the signboards will have to follow the Kannada language, and a priority to other language can also be given, but not that significantly as compared to Kannada. But this is just not about the signboards, you see, that we are talking about, but apparently also in the education system as such, whether it has been with the central government versus the state government as well, often with the syllabus as well, how that the language is not being given a priority as well, has also really eyed not just the pro-Kannada outfits here in the state, but also in the political scenario. We have seen how that the political war of words have continued to erupt as well. So yes, all that needs to be seen going forward, at least now, whether the signboards will really have to be taken care in a very well manner at the level of the civic body as well. So yes, the time will tell us that way. Back to you.
0: Right, thank you so much, Ritu, for getting us details as to what's really playing out on the streets. This is in Bengaluru, where action has been taken by this pro-Kannada outfit after that decision that has been taken by the NCERT to ensure that the first two languages of preference are not Kannada, and Kannada is the third language of preference. Moving on now to AIADMK MLAs. Breaking news coming in to join the TVK. These are rebel AIADMK MLAs which will be switching sides to the TVK. So this is as far as Vijay's government is concerned. We are picking up from our sources that there are two MLAs of the AIADMK that have now decided to switch sides to the TVK. So this is a big political move that is going to be taking place, of the two ex-ministers exit and the AIADMK rebel MLAs announcing their entry into the TVK-led government. Sam, my colleague, joining us in order to get us details. Take us through the details of who are these two MLAs who are ready now to be part of the cabinet and the governance of the TVK.
12: Divya, these are Dr. C. Vijayabhaskar, an MLA who resigned recently, and also a former health minister under the AIADMK regime, and M.R. Vijayabhaskar, another former transport minister under the AIADMK, who recently had resigned from AIADMK. And now these two have formally announced that they would join the TVK tomorrow, along with hundreds of their supporters. And this trend continues even after the patch-up within the AIADMK against the leadership of AIADMK chief EPS. At least 25 of them had voted in favor of the TVK in the trust vote, mounting pressure on EPS to enter into a coalition agreement with TVK, and also questioning his leadership, because the party under his leadership has suffered four consecutive elections. The big question, of course, is when it comes to Dr. C. Vijayabhaskar. He faces corruption allegations in the infamous Gutka scam that is under CBI probe, and many also question how right is for the TVK to allow such leaders facing corruption allegations, as the party came to power in Tamil Nadu on the promise of clean governance and good governance and eradicating corruption. No formal response yet, but some TVK leaders off record say that these leaders only face corruption allegations, but nothing has been proven. And the larger question, of course, is whether the TVK is aiming to bring in maximum numbers from the AIADMK in a bid to secure its own majority whenever the bipoles come. At the moment, the TVK survives as a minority government with support from parties like the Congress, which has become an ally, and other former DMK allies, which are only extending support but not becoming part of their alliance.
0: Right.
12: That's the big question now.
0: Right, Sam, thank you for getting us this breaking news of the two who are switching sides now over to the TVK on a day when, of course, a big crucial meeting is coming up of Vijay, the chief minister, alongside his alliance partners. Moving on now to Uttar Pradesh. The Ram Temple donation theft investigation is only widening, with the investigators now following a possible wider network. The bulk of the funds was recovered based on the information provided by the accused, Avinash Shukla. Of the 89 lakhs recovered, the majority was obtained from Avinash Shukla. The trust had recovered this money on its own initiative even before an FIR was registered. As per sources, the police questioned the accused, and this was the longest line of questioning that has been conducted with the accused, Avinash Mishra, and during which the name of the trustee, Anil Mishra, surfaced all over again. While admitting to the theft of the funds worth crore rupees, these are crores and crores of funds that were in fact siphoned. The accused detailed the entire sequence of events, and the police, their questioning has also revealed that Tinnu was the main accused of that very theft. The accused told that due to Tinnu's, basically what he really did as far as this whole thing that was planned, the theft was easily done because it was in, this was basically coordinated with Tinnu.
13: Chanda aur chadhava chori ke maamle mein sabse jyada cash Avinash Shukla ke thikano se baramad hua hai. Hum us yoga center pahunche hain jahan se 5 June ko Avinash Shukla ke isi thikane se bahut zyada cash mila tha. यहाँ पर एक योगा सेंटर चलता है जिसको चलाती हैं सीमा तिवारी. हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था.
14: सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये हमारे गुरुजी डॉक्टर चैतन्य जी का सेंटर है और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर साधना और योग साधना का कार्य चल रहा है. और ये जो अभिषेक है, सिर्फ अभिषेक ही नहीं, गुरुजी ने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया.
13: अभिषेक अविनाश का भाई.
14: भाई अभिषेक को गुरुजी ने पढ़ाया, लिखाया, उस काबिल बनाया कि नौकरी करे. और वो अब जब नौकरी उसको मिली तो उसने सोचा, गरीब परिवार से था, कि हम अपने भाइयों की भी मदद करें. तो उनको बुलाया, नौकरी दिलाया जगह जगह. उसके और भी भाई थे, एक भाई उनमें से ये राम मंदिर में नौकरी करने लगा. अब उसने वहाँ क्या किया ये तो मुझे मीडिया से ही पता चला कि उसने वहाँ से चुराया.
13: ये देखिए कंबल है, ये सारे कंबल जो है इन्हीं बक्सों के अंदर रखे हुए थे और इन्हीं कंबलों के बीच में कैश रखा हुआ था. आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये बॉक्स है जिस पर लिखा है राम राज्य कोष. और ये बॉक्स यहाँ पर कैसे पहुँचा या इस पर जो स्टिकर लगा है वो उसका क्या मतलब है ये तो जांच में मालूम चलेगा. लेकिन यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है. और देखिए इन्हीं बक्सों से एक ये बड़ा बक्सा है, 1 2 3 ये तीन बॉक्स हैं जी. देखिए ये जो बॉक्स हैं ये खोल भी लेता हूँ मैं. ये कम्बल पड़े हुए हैं और कम्बलों के बीच में ये पैसा छुपा कर रखा गया था जिसको पुलिस ने बरामद किया है.
15: अनिल मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव, पूरी गुंडा, अगर इन लोग का बात चले तो पूरा अयोध्या अपने अंडर में कर लें. ये सोचते
13: क्या क्या गुंडाई करते,
15: ये गुंडाई ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए हनुमानगढ़ी है, ये चाह जाएँ तो अगर इनका बस नहीं चल रहा और ना हनुमानगढ़ी भी अपने अंडर में कर लें, ट्रस्ट में कर लें. इतनी गुंडाई, अगल बगल जो भी ज़मीन लिए हैं सब रोते हैं. पता जब अब जाके जिसकी ज़मीनें गए उनसे ये पूछा जाए, जो पैसा पास हुआ तो वह क्या आपको मिला कि नहीं मिला, जितना आपको मतलब ये उनको पता भी नहीं होगा कि हमारा इतना पैसा बना था.
13: आपने वहाँ पर नौकरी की, कर्मचारियों के साथ किस तरह का बर्ताव था?
15: बहुत अच्छा बर्ताव नहीं है. जो भी अच्छे पद पे हैं, सुपरवाइज़र हो या जो भी उनसे सीनियर होते हैं, वो सब अच्छा बर्ताव नहीं. फिलहाल कहेंगे वहाँ पे शोषण भी लड़कियों को होता है. जो अच्छे पद पे हैं उनके जितने ट्रस्टी हैं, जितने ट्रस्ट में हैं, जो भी ट्रस्ट का कार्ड पहन के टहलते हैं वो सब उन्हीं संबंधी हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा या गोपाल राव. और हमें लगता है चंपत जी, तो हम नहीं कह सकते, चंपत जी 2-3 बार जब तक हम काम किए 2-3 बार आए हैं तब से हमको नहीं देखे. बट छोटी छोटी चीज़ों पे हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा गोपाल राव और अनिल मिश्रा को होता है.
0: Let's just move on to more news coming in, and this is in regard to the significant relief when it comes to the energy front. The center has announced reduction in prices of commercial LPG cylinders. The price of a 19-kilogram commercial LPG cylinder has been cut by 183 rupees and 50 paise, bringing the Delhi price down from 3,113 rupees to 2,930 rupees. The price of the 5-kilogram LPG refill cylinder has also been reduced by 13 rupees, with the Delhi rate falling from 821 rupees and 50 paise to now 808 rupees and 50 paise. The private fuel retailer has also announced, we are talking about the Nayara Energy, that's announced a cut in the retail fuel prices, reducing the petrol by 5 rupees per litre and diesel by 3 rupees per litre across its network of over 7,000 fuel stations. Also, aviation fuel has now, in fact, as far as domestic airlines, has been reduced by 5 rupees per litre, taking the effective rate to 110 per litre or 1.10 lakh per kiloliter, down from 1.15 lakh per kiloliter. Let's just switch tracks now. Ahead of the parliament session, the Prime Minister is all set to hold a cabinet meeting that's going to be taking place today. The meeting comes just a day after the Prime Minister sat down with secretaries from various ministries for more than 4 hours. NDTV has accessed the inside track of the top bureaucratic huddle, and the interaction focused on the core theme of deregulation and other reforms for the ease of doing business and the ease of living, along with Atmanirbharta, with various departments highlighting specific challenges and future strategies employed by them. During the interaction, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole of the government as far as a whole of government approach and breaking the department. This is what has been really highlighted as the importance of that meeting, that planning and that interdepartmental coordination for informed decision making.
16: ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮವರೇ ಸಚಿವರು ಇರ್ತಾರ ಏನ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಏನ್ರಿ ಈಗ 10ನೇ ದಿವಸದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಅದು ನನ್ನ ಕೈ ಗೊತ್ತಿರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ.
0: And with that, we're slipping into a very short break. Back with a whole lot more on the other side. Stay with us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों से सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: punishment for those found guilty. The ministers have said that the BMC will conduct a detailed probe into the incident and promise that no culprit will be spared.
1: प्री मानसून की जो तैयारी है बम्बई में करना पड़ता है वो नहीं की गई. आपको लगा पता चला होगा कि पहले ही पानी में कम बारिश में बम्बई पूरी डूब गई. वैसे ही आज जो घटना हुई है वो घटना ये सरकार की बीजेपी और महायुति की सरकार के पाप के वजह से हुई है.
2: स्कूल बेस के ऊपर जो पेड़ गिरी 10 बज के घायल एक का मृत्यु हुआ. इस सारी घटनाओं को जो जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कार्रवाई करो. पहली बारिश हो या दूसरी बारिश हो बारिश की पूर्व तैयारी करते समय वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन सुपरिटेंडेंट यही मेंटेनेंस इन्होंने जब जांच करते हैं पूरे वार्ड में तब ये सारी स्थिति देखनी चाहिए थी. वहाँ के लोगों ने बहुत बार कंप्लेंट की थी कि ये झाड़ काटो तब तक भी लोगों ने ध्यान न दिया और इसके कारण आज दुर्घटना हुई.
3: बीएमसी की जिम्मेदारी है जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स है या ओपन स्पेसेस है उस पर अगर झाड़ बहुत बढ़ गए हैं तो उसकी छाटनी करते रहना और प्री मॉनसून स्पेसिफिकली इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाते हैं. अगर इस तरीके की लापरवाही बीएमसी के तरफ से हुई है तो वो छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक अगर ये जो भी है उसमें कौन कौन दोषी है कौन किसकी किसकी जिम्मेदारी आती है किसकी किसकी जवाबदारी ठरवना देना ते पूर्ण माहिती मतलब ये पूरी तरीके से एक SIT फॉर्म की जाए. इसके ये झाड़ के ऊपर किसी ने कंप्लेंट किया था क्या कभी इसकी छाटनी हुई भी है क्या क्या बीएमसी के तरफ से पूरी तरीके से दुर्लक्ष किया गया है ये पूरी एक जवाबदारी निश्चित करनी पड़ेगी.
4: नहीं देखते उसका कारण क्या है वो पता करना चाहिए. वो तो नैसर्गिक आपत्ति हो सकती है क्योंकि पेड़ ऐसे अपने आप गिरा या उसको किसी काम के लिए काटा जा रहा था वो देखना पड़ेगा और पूरी जांच के बाद ही इसमें कौन दोषी है वो समझ में आएगा. लेकिन ऐसी घटनाएं फिर से ना हो इसलिए हम कदम उठाएंगे.
5: हम जाँच करेंगे उसमें अगर कोई दोषी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और ये जो इंसिडेंट घटी है वह वापस नहीं हो मुंबई में इसके लिए हम पूरे निर्देश देंगे और इस पूरा जो घटनाक्रम है उसकी चौकसी करेंगे.
6: ये बहुत दुर्दैवी चीज़ है. इसके बारे में महापालिका को इंक्वायरी की जांच के लिए आदेश दिए जाएंगे. मैं मुंबई के महापौर से बात करूंगा डिटेल में उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. उसमें जो दोषी रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी और दूसरी बात जो बच्चों को गंभीरता से जख्मी हुए उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज मिलने के लिए कोशिश की जाएगी. मुंबई के पालक मंत्री माननीय एकनाथ राव जी शिंदे साहब से भी बात कर और मुंबई के सभा के पालक मंत्री आशीष शेलार जी से बात कर ये क्यों हुआ और इस तरीके की जांच होकर इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इस तरीके की हम बात करेंगे.
0: 11-year-old Vihan Srivastava was killed after a tree crashed onto his school bus in Mumbai's Chembur area. Four other children were injured and are stable. The tree collapsed onto a bus carrying 13 students from a school Tuesday afternoon. While the other children were rescued, Vihan could not be saved. Hours after the tragedy, his mother Juhi remained in shock, clutching his cricket bat and insisting he still had to go play. Neighbours say the 11-year-old dreamed of becoming a professional cricketer and was known as a bright, cheerful child. They say Vihan's mother is struggling to come to terms with his death, still holding on to his cricket bat as she waits for him to return. This is the grief that she is undergoing and bearing right now while you have Maharashtra ministers not even giving the answers they should. Insensitive comments coming in that this was just a natural incident that happened and there will be a probe. The incident, of course, has sparked outrage with residents alleging repeated warnings about the hazardous tree that were ignored. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered a probe and assured all possible assistance to the family as demands grow for accountability over the alleged civic lapse. Mumbai Mayor Ritu Tavre visited the injured children and their families at the hospital. She, along with the municipal commissioner, is expected to inspect the site as officials begin their review of the incident. This remains an NDTV campaign.
7: बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है. एक बच्चे की जान चली गई है. अनफॉर्चुनेटली आप अंदर गई थी काफी समय आपने अंदर बिताया क्या देखा आपने?
8: बहुत ही दर्दनाक बहुत ही पेनफुल है ये सब. मुझे खुद को यहाँ पे एज अ मेयर ने माँ के हिसाब माँ के तौर पे मैं बच्चे को देखा मुझे बहुत बुरा लगा. माँ पिताजी स्पीचलेस थे मैं क्या बात करूँ उनसे. लेकिन मैंने स्पॉट पे मैं गई थी वहाँ पे ये जो यूनिवर्सल स्कूल की जो बस है वैन है वो जा रही थी और

0: उसके अंदर 13 बच्चे थे, 12 बच्चों का रेस्क्यू किया, लेकिन एक बच्चा जो है वहाँ पे पूरा बहुत ही डेंजरस परिस्थिति में इंजर्ड हुआ और उसकी डेथ हो गई। यहाँ पे मैंने पालिका प्रशासन के पास से पूरा ब्यौरा लिया, रोड नंबर 11 पे जितने भी पेड़ है उसका ट्रिमिंग हुआ था क्या, तो उन्होंने हाँ बोला। मैंने खुद इस रोड का ये विजिट किया था जब मैं सीसी रोड यहाँ का बन रहा था, तभी मैं खुद आई थी ये पूरा काम देखने के लिए। तो अगर मुझे अभी वहाँ पे पता चला कि स्थानिक लोगों ने इसके ऊपर कुछ कंप्लेंट दी थी कि ये डेंजरस जोन पे पेड़ है, अगर वो कंप्लेंट मिलती है और तो भी एमवीएस के अधिकारी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा तो निश्चित उनके ऊपर कार्रवाई होगी।
1: हम यहाँ पे रहते हैं, ये यहाँ पे सब ये लेन्स में बहुत सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, इसके वजह से बड़े बड़े गड्ढों की वजह से ऑलरेडी वो जो रूट्स है वो ऑलरेडी वीक हो गए हैं। दूसरा, यहाँ पे कंक्रीट का रोड बनाया गया है, कंक्रीट का रोड बनाते समय जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है, तभी वो काम करते समय जो पेड़ है वहाँ किससे उन्होंने बराबर काम नहीं किया है, उनकी रूट्स को काटा गया है और वीक किया, एम्प्यूट किया गया है, जिसकी वजह से ये पेड़ बहुत ही डेंजरस हुए हैं। और दूसरा ये यहाँ पे समस्या है कि यहाँ पे पार्किंग दोनों जगह पे होता है, तो जब ये बस आ रही थी तो वो गाड़ी नेगोशिएट नहीं कर पा रहा था और वो गाड़ी स्लो होने के बाद वो पेड़ तभी उसके ऊपर गिर गया और वो जो बड़ी दुर्घटना हुई है, एक बच्चे की मौत हो गई है अभी, और कितने लोगों की मौत होगी। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट हैं, हम बहुत ही डर में जी रहे हैं कि कब हमारे ऊपर कोई पेड़ गिरे। तो ये बीएमसी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके ध्यान देना चाहिए।
2: ये जो है ना, ये झाड़ दिखने में इतने बड़े हैं, ऊपर उनका बहुत बड़ा लीव्स ब्रांचेस है और उसके वजह से नीचे का जो है ना उसके लोड आता है और रूट्स उनके सब एक्सपोज हुए हैं, इनकी ऑडिट हुई नहीं है, दिस इज़ व्हाट आई कैन से। एडवाइस यही है, अगर आप अच्छे लगे तो करना ज़रूरी है, कि यहाँ से बच्चे लोग बहुत जाते हैं, यहाँ पे स्कूल भी आगे। वो झाड़ है ना जो टिल्ट हुआ है उसको आपको 10 फुट 20 फुट तक कट करना है।
3: टोटल 12 बच्चे थे यहाँ पर, उसमें एक लास्ट में अब भी डेड बॉडी निकाली थोड़ी देर पहले।
4: अच्छा, जो लास्ट वाला बच्चा निकाला वो डेड बॉडी निकाला आपने? यस। कितने समय से फंसा हुआ था?
3: ये करीबन 1-2.5 बजे की बात है।
4: 2-2.5 बजे तो कैसे पता चला, यानी आपके सामने
3: एक कॉल आने लगे? हम लोग रहते यहाँ पर ही है, 11th रोड के एंड पे रहते हैं। जब पता चला तब हम लोग ने कॉल किए, पुलिस वगैरह, लोकल पुलिस वगैरह आई थी, फिर हम लोग ने क्रेन्स वगैरह मंगा के फिर पेड़ को निकाल लिया, क्योंकि पेड़ भारी हैवी था,
4: बहुत बड़ा था।
3: हाँ, क्योंकि 2 फराना तो लगेगा।
5: The probe has intensified in the Pune murder case of Ketan Agarwal, who was allegedly killed by his fiancée Sia and her boyfriend Chetan Chaudhary. A big twist has emerged in the probe. As per reports, Ketan had told his family that he had doubts over Sia as she kept mentioning Chetan. He also told his parents, according to sources and the family, that something doesn't feel right about her. NDTV has accessed also a new video of Ketan from the 7th of May this year, where he was seen dancing with Sia's parents at a family function. Meanwhile, the police took Chetan again to the fort for gait analysis and to recreate the crime scene. He was taken to the fort dressed in the exact clothing as the person seen in that CCTV footage to match the way his body moved with the CCTV footage video.
6: The police have been able to complete a very important part of their investigation, which is, of course, a physical spot visit with the accused and gait analysis. What is gait analysis? Well, when the identity of the accused is not absolutely clear beyond doubt from the CCTV footage or witness statements or other means of evidence, the police have to then corroborate it with forensic analysis, and that's of course the forensic analysis of a person's style of walking, how he moves his arms, his limb movements, etc., his body movements. All of that is analyzed by forensic experts to trace the accused to the crime spot. Now in this case, Chetan Chaudhary of course was here at the Lohagarh fort with the police, who took him to the spot, and then of course from there they conducted that gait analysis. After this case, are more people coming here?
7: We are actually not interested in the case. We have come here as just a site for a visiting.
6: Do you think more people will now start coming here because obviously people want to see like it happens?
8: Yes, definitely.
9: Incident occurs, and this incident has been a major incident in this country. So I think people will come to see what this fort holds.
10: On the other hand, people are also scared.

0: even if you talk about my parents, they were not allowing me to come here. Yeah. They thought that the same. They saw this on news and they told me They told me that I should not go there.
1: रिक्रिएशन ऑफ सीन के लिए लेके गए थे. उसने सभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताए हैं कि क्या क्या हुआ था उस दिन. उसकी अभी तपास आगे चालू है. इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. अभी तपास कर रहे हैं हम.
2: लेकिन ऊपर जो पुतला लेके गए थे वो कितने किलो का था और किस प्रकार से रिक्रिएशन
1: वो केतन के बॉडी के हिसाब से था. उस वेट के हिसाब से हमने पुतला रखा था. बाकी उसने सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताए हैं कि क्या क्या हुआ है. उस हिसाब से हमने मेमोरेंडम वगैरह किया.
3: सर फ्रेंकली ऑल ऑफ दीज ये सारे के सारे इस वक्त आरोप है. आरोपों को सिद्ध करना पड़ेगा एंड द पुलिस विल हैव टू कम अप विद कोरोबरेटिव एविडेंस. कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि ये जो थियरी बनाई गई है ये एक्चुअल में घटी थी. पुलिस अपना काम कर रही है. इन्वेस्टिगेशन 7 दिन हो चुके हैं. उन्होंने सीन रिक्रिएशन से लेकर के गेट एनालिसिस सारे के सारे जितने भी टूल्स उनके पास इन्वेस्टिगेशन के अवेलेबल हैं वो सारे इस्तेमाल करेंगे. अब जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद पता चलेगा कि इन थियरीज के सपोर्ट में पुलिस के पास क्या क्या एविडेंस है.
4: Gate analysis.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
7: This location from Tel Aviv
6: brought clarity to complex issues of national

0: ऑफ सीन के लिए लेके गए थे, उसने सभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताए हैं कि क्या क्या हुआ था उस दिन। उसकी अभी तपास आगे चालू है, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, अभी तपास कर रहे हैं हम
1: लोग। लेकिन ऊपर जो पुतला लेके गए थे वो कितने किलो का था और किस प्रकार से रिक्रिएशन
0: वो केतन के बॉडी के हिसाब से था, उस वेट के हिसाब से हमने पुतला रखा था। बाकी उसने सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताए हैं कि क्या क्या हुआ है, उस हिसाब से हमने मेमोरेंडम वगैरह किया।
2: सर फ्रेंकली ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे इस वक्त आरोप हैं, आरोपों को सिद्ध करना पड़ेगा एंड द पुलिस विल हैव टू कम अप विद कोरोबोरेटिव एविडेंस। कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि ये जो थियरी बनाई गई है ये एक्चुअल में घटी थी। पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन 7 दिन हो चुके हैं, उन्होंने सीन रिक्रिएशन से लेकर के गेट एनालिसिस सारे के सारे जितने भी टूल्स उनके पास इन्वेस्टिगेशन के अवेलेबल हैं वो सारे इस्तेमाल करेंगे। अब जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद पता चलेगा कि इन थियोरीज के सपोर्ट में पुलिस के पास क्या क्या एविडेंस है।
3: गेट एनालिसिस मींस एनालिसिस ऑफ वॉकिंग स्टाइल ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, इट इज अ टूल ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू हेल्प द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सम सीरियस केसेस और सम वेरी इंपॉर्टेंट केसेस इन विच द सस्पेक्ट इज नोन, बट टू क्रिएट सम मोर ऑथेंटिक एविडेंस अबाउट हिज इन्वॉल्वमेंट इन सच ए केस हिज वॉकिंग स्टाइल इज एनालाइज्ड।
4: Well, the expert speaking on the matter. Now, let's just also listen to what the family had to say. They've changed their stand. What did they say at first and what are they saying now?

किया कि जो उनकी लिपो लेख है उसको खोल के चीन के साथ कई जगह कनेक्टिविटी हो सकती है। हमारा भी है, जैसे हमारे रास्ते है, खोतान है, यारखंड है, काशगर है जो वाया लद्दाख है, तो जम्मू कश्मीर की एक स्ट्रेटजिक पोजिशन है। देखिए पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजिक पोजिशन को कैसे इस्तेमाल कर रहा है।

0: ऐसी घटना घटी नहीं, इसके बारे में कॉरपोरेशन को भी हिदायत दी गई है।
1: वही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सिर्फ दिखावा किया गया कि तैयारियां सब मानसून के पहले हो गई है, लेकिन इस तरह की घटना सब कुछ एक्सपोज कर देती है।
0: खतरा पेड़ गिरना, बिजली गिरना, ये आदमी के हाथ में नहीं है। अब ये पेड़ गिरने वाला ये थोड़ी ना पता रहता है, लेकिन तो भी ऐसे कोई जो धोखादायक है उसको निकालने की जरूरत पड़ेगी।
1: लेकिन सर पेड़ गिर ऑडिट तो करना जिम्मेदारी है ना बीएमसी की?
0: ऑडिट तो करते हैं ना
1: सर। वहाँ के लोग आरोप लगा रहे कि हुआ नहीं वहाँ काम।
0: नहीं, ऐसा नहीं होता, काम पूरा होते रहता। पेड़ गिरना ये नैसर्गिक है, कोई आपत्त हो सकता है, कभी हवा ज़्यादा आ जाती है उससे गिर जाता है, लेकिन जो घटना घटी उसके बारे में हमें बेहद दुख है और हम सभागृह में वो बात उठा।
2: ऐसे नहीं कि मुंबई में पहली बार बरसात हो रही है, लेकिन पहली बार एक ऐसा शासन बीएमसी में बैठा हुआ है पिछले बहुत सालों के बाद जिसको मुंबई की चिंता नहीं है, लेकिन ढाका में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उस पर ही ज्यादा नजर हमारी महापौर साहिबा की है। और यही बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हम जो पहले से बताते आए थे, हमारे जो एक्सपीरियंस है उनसे बताते आ रहे थे, कोई ना कोई तो सीख ले रास्तों के काम कैसे होने चाहिए, सेफ स्टेज पे कैसे लाते हैं, या ये जो कल की घटना है वो कैसे ना हुए। लेकिन इनका ध्यान पूरा राजनीति कैसे हो, पोलराइजेशन कैसे हो, उसी पे है।
1: थाना लगातार एनडीटीवी मांग कर रहा है बच्चे की जान जो गई है उस पे कैंपेन चला रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने विषय उठाया हाउस में, क्या कहेंगे?
3: इसकी जवाबदारी तो सीधी सीधी सरकार पे जाती है, बीजेपी महायुति की सरकार पे जाती है, बीएमसी में बैठी हुई बीजेपी महायुति की सरकार है उनके ऊपर जाता है। इन्हें जनता का पैसा लूटा है और लोगों को जो सुविधा देना है वो दिया गया नहीं है। यह भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार का परिणाम है कि आज एक निर्दोष बच्चे की जान कल गई है, आज एक व्यक्ति की जान चली गई है, और इसका मतलब है कि ये भ्रष्टाचार इनका अभी सामने आया।
1: आपको क्या जवाब मिला अंदर?
3: कोई जवाब नहीं। हमने तो माननीय अध्यक्ष को कहा कि भाई मंत्री जवाब दे, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं। लेकिन कौन मर रहा है, कौन आम आदमी मर रहा है, इससे कोई लेने देना नहीं, ऐसे ही सरकार।

0: actually got hospitalized immediately after this news of Ketan Agarwal's murder had broken.
1: आपके वकील कौन है? मतलब इस केस में सिया गोयल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है?
2: मेरे वकील जी अभी विपुल जी सर है, जिनको मैंने पूरा यानी कि सिया का केस दिया है, और आशुतोष श्रीवास्तव जी बड़ा नाम है उनका,
1: सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं।
2: हाँ जी, हाँ जी, उनका आज बड़ा नाम है उनका आज, तो मैंने कभी उनको कुछ हायर नहीं किया है और ना इस केस में उनको कुछ यानी कि काम करने का मैंने कुछ कहा है।
1: तो इस केस कौन देख रहा है फिर?
2: विपुल जी सर देख रहे हैं जी।
1: अच्छा, और भी मेरे कुछ सवाल है आपसे। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है आप, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है?
2: पुलिस अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उन्हें जल्द से जल्द आरोपी का पता चले, ये मेरी भगवान से भी प्रार्थना है।
1: और सिया आरोपी ऑलरेडी है, कल दोषी करार हो गई तो?
2: दोषी करार होती है तो वही सजा है जो केतन जी के साथ हुआ है, ये तो मैंने पहले भी मीडिया में बयान दिया है, और दोषी कोई भी हो, मेरी बेटी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे।
1: सजा को मिलनी बेटी को अगर दोषी करार देती है तो वो सजा देने के हक में है?
2: पूरा हक में है, पूरा हक में, और इमीडिएटली एक्शन लेके ये काम खत्म होना चाहिए।
0: All right, so that's what Sia Goyal's father had to say. We'll continue to track this story and all the developments. For the moment, slipping into a short break. Do stay with us.

0: देश बाइकर, दिस इज सुजाता द्विवेदी रिपोर्टिंग फॉर NDTV।
1: सर आप क्या कहना चाहेंगे BMC से?
2: BMC से कहेंगे ये लापरवाही का प्रतीक है, एक जो पेड़ झुके हुए हैं, पुराने हो गए हैं, जिनकी डालें बहुत पहली हुई हैं, उनको कट कर देना चाहिए।
1: और पहले से कंप्लेंट्स था,
2: पहले कंप्लेंट था, अरे पूरा पेड़ हटा देना चाहिए था। ऐसा पेड़ जो अप्रूटेड हो रहा हो, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स कह रहे हैं झुक जाए 60 डिग्री या 70 डिग्री पर, अब क्या होगा उसका हाल? जरा सा झोंका आया, पानी का वजन पड़ा हो।
1: अभी फैमिली का क्या हाल है? आप ग्रैंडफादर हो,
2: वो अकेला लड़का, उनके पास कुछ नहीं, उनका तो परिवार चिराग खत्म।
3: ही वॉज द ओनली सन।
2: ओनली एयर्स, मतलब केवल एक ही जो कुछ है संतान, लड़का लड़की सब कुछ वही
3: ओनली इशू। और ऐसा चला गया, इतना होनहार बच्चा था, क्या बताएं, इसका तो कोई क्षतिपूर्ति किसी धन से भी नहीं हो पाई, कितना भी धन करें।
1: सर अभी आप कुछ कंप्लेन करेंगे, क्रिमिनल FIR रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये तो
3: नहीं सोच रहे हैं, इस बात पर विचार कर रहे हैं। आप लोग भी, मीडिया वाले भी, इस पर करिए इसको, देखिए वो पुत्र तो आ नहीं सकता है, सन कैन नॉट कम अगेन, बट एटलीस्ट ही शुड बी पेड सूटेबली फॉर द लॉस विच ही सफर्ड। कुछ तो टोकन
2: और बच्चे तो सुरक्षित हों
1: जी। बिल्कुल, NDTV कैंपेन चला रहे हैं हम लोग, यू नो,
2: ये कम से कम एक मुहिम चलानी चाहिए, पूरे पूरे इस प्रकार के पेड़ काटने की, गड्ढे अड्डे हो खुले में और खुले होते हैं उनको बंद करने की, ये होनी चाहिए इस पर तमाम घटना।
4: हम यहाँ पे रहते हैं, ये यहाँ पे सब ये लेंस में बहुत सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, इसके वजह से बड़े बड़े गड्ढों की वजह से ऑलरेडी वो जो रूट्स है वो ऑलरेडी वीक हो गए हैं। दूसरा, यहाँ पे कंक्रीट का रोड बनाया गया है, कंक्रीट का रोड बनाते समय जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है, तभी वो काम करते समय जो पेड़ है वहाँ से उन्होंने बराबर काम नहीं किया है, उनकी रूट्स को काटा गया है और वीक किया, एम्प्यूट किया गया है, जिसकी वजह से ये पेड़ बहुत ही डेंजरस हुए हैं। और दूसरा ये यहाँ पे समस्या है कि यहाँ पे पार्किंग दोनों जगह पे होता है, तो जब ये बस आ रही थी तो वो गाड़ी नेगोशिएट नहीं कर पा रहा था और वो गाड़ी स्लो होने के बाद वो पेड़ तभी उसके ऊपर गिर गया और वो जो बड़ी दुर्घटना हुई है।
5: Well, this is not the first time that such an incident has actually happened here in India. In the past few months, there have been multiple incidents where civic negligence, civic apathy has taken lives of young people. First up, let's tell you about the incident in Delhi, July 2024, where 3 civil aspirants were drowned to death. And this incident happened in a coaching center basement. This is July 2025. It happened in a coaching center basement, which was flooded in rain. And the 3 UPSC aspirants were rather locked inside that room, and they were not able to get out because of incessant rainfall here in Delhi. Then let's tell you about another incident in Delhi itself. 26-year-old UPSC aspirant was electrocuted to death because of the rain. And he was exposed to the wires in waterlogged area, which killed another UPSC aspirant in New Delhi. Another incident from Mumbai, 17 people were killed in a hoarding collapse due to rain. Again, the infrastructure fell on them. This incident was in Mumbai, so we've told you about civic apathies in Delhi and Mumbai. Let's now shift our focus to Tamil Nadu in Tambaram, where a 74-year-old man was crushed by a bus while trying to avoid a man pothole. And in Haryana as well, 16-year-old basketball player, he died on court as the pole crashed. He was practicing basketball and the pole crashed on him, and that's when he succumbed to his injuries. Meanwhile, in Indore as well, this was regarding the contaminated water which killed at least 25 people. The water in Indore was contaminated and a lot of people were drinking that water, and at least 25 people died. This is a very recent incident which happened here in Noida this year itself, where a 27-year-old techie drowned in an open pit because he could not see the left turn to reach his home, and there was a huge gorge in which he fell. Then in Bengaluru this year itself, 14-year-old found dead in an open pit. He fell into an open pit there. This incident is from Bengaluru. Hence, these are some of the key incidents which has taken lives of multiple people here in India because of civic negligence, because of civic apathy. It of course comes down to the same million-dollar question as to who is supposed to be held accountable for all these young lives who have been lost. But let's shift our focus to what has happened there in Mumbai's Chembur, where an 11-year-old student's death has now raised

0: questions over student safety, over safety of any young life actually, and the enforcement of transport norms. Maharashtra minister has made a shocking claim over Vihan's death and said, who knows when trees will fall or not? This is not in our hand. That's sitting minister's statement. The opposition has now come down heavily on the Mahayuti government. Congress leader Nana Patole has alleged that the government is least bothered about public issues, while Shiv Sena UBT has demanded strict action against everyone responsible for the tragedy. Responding to the children, to the criticism there, the Maharashtra ministers have now assured the harshest punishment for those found guilty. He said that the BMC will conduct a detailed probe into the incident and promised that no culprit will be spared.
1: पेड़ गिरना, बिजली गिरना, ये आदमी के हाथ में नहीं है। अब ये पेड़ गिरने वाला ये थोड़ी ना पता रहता है। लेकिन तो भी ऐसे कोई जो धोखादायक है, उसको निकालने की जरूर कोशिश करें।
2: लेकिन सर पेड़ गिर ऑडिट तो करना जिम्मेदारी है ना बीएमसी की?
1: ऑडिट तो करते हैं ना।
2: सर वहाँ के लोग आरोप लगा रहे कि हुआ नहीं वहाँ काम?
1: नहीं ऐसा नहीं होता, काम पूरा होते रहता। पेड़ गिरना ये नैसर्गिक है, कोई आपत हो सकता है, कभी हवा ज़्यादा आ जाती है उससे गिर जाता है, लेकिन जो घटना घटी उसके बारे में हमें बेहद दुख है।
3: ऐसे नहीं कि मुंबई में पहली बार बरसात हो रही है, लेकिन पहली बार एक ऐसा शासन बीएमसी में बैठा हुआ है पिछले बहुत सालों के बाद जिसको मुंबई की चिंता नहीं है, लेकिन ढाका में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उस पर ही ज्यादा नजर हमारी महापौर साहिबा की है। और यही बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हम जो पहले से बताते आए थे, हमारे जो एक्सपीरियंस है उनसे बताते आ रहे थे, कोई ना कोई तो सीख ले रास्तों के काम कैसे होने चाहिए, सेफ स्टेज पे कैसे लाते हैं, या ये जो कल की घटना है वो कैसे ना हुए। लेकिन इनका ध्यान पूरा राजनीति कैसे हो, पोलराइजेशन कैसे हो, उसी पे है।
4: इसकी जवाबदारी तो सीधी सीधी सरकार पे जाती है, बीजेपी महायुति की सरकार पे जाती है, बीएमसी में बैठी हुई बीजेपी महायुति की सरकार है उनके ऊपर जाता है। इन्हें जनता का पैसा लूटा है और लोगों को जो सुविधा देना है वो दिया गया नहीं है। यह भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार का परिणाम है कि आज एक निर्दोष बच्चे की जान कल गई है, आज एक व्यक्ति की जान चली गई है, और इसका मतलब है कि ये भ्रष्टाचार इनका अभी सामने आया।
5: बीएमसी की जिम्मेदारी है जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स है या ओपन स्पेसेस है उस पर अगर झाड़ बहुत बढ़ गए हैं तो उसकी छाटनी करते रहना, और प्री मॉनसून स्पेसिफिकली इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाते हैं। अगर इस तरीके की लापरवाही बीएमसी के तरफ से हुई है तो वो छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक, अगर ये जो भी है उसमें कौन कौन दोषी है, कौन किसकी किसकी जिम्मेदारी आती है, किसकी किसकी जवाबदारी ठरवना देना, ये पूर्ण माहिती, मतलब ये पूरी तरीके से एक एसआईटी फॉर्म की जाए, इसके ये झाड़ के ऊपर किसी ने कंप्लेन किया था क्या, कभी इसकी छाटनी हुई भी है क्या, क्या बीएमसी के तरफ से पूरी तरीके से दुर्लक्ष किया गया है, ये पूरी एक जवाबदारी निश्चित करनी पड़ेगी।
0: All right, while the blame game can go on, we have another incident coming in from Navi Mumbai because of the rains and the rain, incessant rainfalls there. The news is that two students have now been electrocuted in Nerol, in Mumbai's Nerol. They have been hospitalized and they're currently undergoing treatment. Amid heavy rains in Navi Mumbai, two college students suffered electric shocks after a short circuit in a power cable near the LP bridge in Nerol. The current spread through the waterlogged area, causing both the girls to collapse. And they were rushed to the D.Y. Patil Hospital by auto rickshaw and they're currently undergoing treatment in Nerol. The police officials have now launched an investigation into the incident. Remember this incident where two school girls have been electrocuted in Mumbai's Nerol comes just a day after a tree collapsed on a school bus which killed an 11-year-old boy named Vihan. Hence, this is another incident of civic apathy, civic negligence, which has killed young lives. Listen in to what the Mumbai mayor has to say on this. Navi Mumbai mayor.
6: नक्कीच आज इथं एक दुर्दैवी घटना घडली असं आपण बघू शकतो. दोन मुली कॉलेजवरून येत असताना इथं ओपन वायरवर त्यांचा पाय पडून त्यांना शॉक लागलेला आहे. नशिबानी त्या सुखरूप आहेत, त्यांना जास्त इजा झालेली नाहीये, पण शॉक नंतर आता 24 तास त्यांना अंडर ऑब्झर्वेशन ठेवलेलं आहे आणि आपल्या पालिकेच्या फोर्टीज मध्ये त्यांना आता शिफ्ट करण्यात येणार आहे. नक्कीच अशा पद्धतीच्या घटना यापुढे घडायला नकोत. आम्ही एमएससीबी असो किंवा इतर प्राधिकरण त्यांच्या माध्यमातून हे चूक झाली असेल तर त्यांना त्याविषयी जाब विचारणं आणि

0: कुछ और कैश मिले, कुछ और गहने बरामद हों। पुलिस के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि कैश मिलने के अलावा आरोपियों ने दान के पैसे से अयोध्या और अयोध्या के बाहर कई इलाकों में कई महंगी प्रॉपर्टीज परचेज की हैं, जिसको लेकर जांच चल रही है। ऐसी सभी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और लोकल पुलिस के मुताबिक हो सकता है कि बहुत जल्दी इस मामले की जांच ईडी शुरू करे, क्योंकि ईडी इस तरह के मामलों की जांच करने के लिए जो फाइनेंशियल मामले होते हैं, जो वित्तीय मामले होते हैं, उनकी जांच करने के लिए एक प्रोफेशनल एजेंसी है। तो ईडी भी हो सकता है कि बहुत जल्दी इस मामले की जांच शुरू करे, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत वो जाँच कर सकती है, आप आरोपियों की दान से कमाई हुई प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकती है। तो लोकल पुलिस के साथ साथ जो बाकी एजेंसियां हैं वो भी इसकी जांच में शामिल हो सकती हैं। पुलिस के मुताबिक आठों आरोपियों के यहां से जो कैश मिला है उसको सील कर लिया गया है और आगे की जांच के लिए आरोपियों के यहां और उनके परिवार के लोगों के यहां लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ऐसा भी पॉसिबल है कि आरोपियों ने अपने परिवार के नाम से या जो उनके करीबी लोग हैं उनके नाम से अयोध्या और उसके बाहर कई संपत्तियां खरीदी हों, तो उसको लेकर भी जांच चल रही है। जी,
1: सो दिस इज जस्ट एज आई बीन सेइंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग, इट्स लाइक पीलिंग ऑफ अनियन एंड लेयर बाय लेयर द पुलिस द इन्वेस्टिगेटर्स आर ट्राइंग टू इनफैक्ट अंडरस्टैंड, trying to go through this entire trail of money, of cash, of the properties which have been bought from this cash. This is absolute theft of the faith, devotion and the trust of the people. And, you know, no matter where it leads to and no matter how powerful those people are, because the buck has to stop on the people, those who have been leading this entire operation. And if they are not held accountable, I don't think so. The people, the devotees, the Ram, the, you know, Lord Ram devotees across the country are going to have any faith in any sort of investigation if it doesn't lead right to the top of those who were responsible to ensure that their devotion, their theft, their emotions are not, in fact, stolen, or at least the people do not misuse the position that they are in this manner. Thank you so much, Mukesh and Ajay, for joining me. We'll keep tracking this investigation very, very closely. Let me also tell you, ladies and gentlemen, the Ram Temple donation theft investigation is widening, with investigators now following a possible wider network. Ayodhya police may also, as Mukesh was telling us, get the ED in as far as this case is concerned. ED will probe the money trail angle. The bulk of the funds were recovered based on the information provided by the accused, Avinash Shukla. Of the almost 89 lakh rupees which have been recovered, the majority was obtained from Avinash Shukla. The trust had also recovered this money on its own initiative before the FIRs were registered. As per the sources, the police interrogated the accused. During the questioning, the name of trustee Anil Mishra surfaced once again. Remember, this is the same Anil Mishra who, along with Champat Rai, had resigned, taking a higher moral ground, saying that he's resigning, taking the moral responsibility. Now, his name has resurfaced once again. While admitting to the theft of the funds worth crores, the interrogation in the accused, as far as the police interrogation is concerned, also revealed that Tinu was the main patron of the theft, though the recovery from his house has just been 1 lakh rupees. The accused told that due to Tinu's connivance, the theft was easily done. I just want to play out a ground report of the time when the investigators were also at Avinash Shukla's residence. Mukesh sent us this report. Take a look.
0: चंदा और चढ़ावा चोरी के मामले में सबसे ज़्यादा कैश अविनाश शुक्ला के ठिकानों से बरामद हुआ है। हम उस योगा सेंटर पहुँचे हैं जहाँ से 5 जून को अविनाश शुक्ला के इसी ठिकाने से बहुत ज़्यादा कैश मिला था। यहाँ पर एक योगा सेंटर चलता है जिसको चलाती हैं सीमा तिवारी। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था।
2: सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये हमारे गुरु जी डॉक्टर चैतन्य जी का सेंटर है और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर साधना और योग साधना का कार्य चल रहा है। और ये जो अभिषेक है, सिर्फ अभिषेक ही नहीं, गुरुजी ने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया।
0: अभिषेक अविनाश का भाई,
2: भाई अभिषेक को गुरुजी ने पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया कि नौकरी करे। और वो अब जब नौकरी उसको मिली तो उसने सोचा, गरीब परिवार से था, कि हम अपने भाइयों की भी मदद करें, तो उनको बुलाया, नौकरी दिलाया जगह जगह। उसके और भी भाई थे, एक भाई उनमें से ये राम मंदिर में नौकरी करने लगा। अब उसने वहाँ क्या किया ये तो मुझे मीडिया से ही पता चला कि उसने वहाँ से चुराया।
0: ये देखिए कंबल है, ये सारे कंबल जो है इन्हीं बक्सों के अंदर रखे हुए थे और इन्हीं बक्स कमलों के बीच में कैश रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये बॉक्स है, जिस पर लिखा है राम राज्य कोष, और ये बॉक्स यहाँ पर कैसे पहुँचा या इस पर जो स्टिकर लगा है वो उसका क्या मतलब है, ये तो जांच में मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है, और देखिए इन्हीं बक्सों से एक ये बड़ा बक्सा है, एक दो तीन, ये तीन बॉक्स हैं जी। देखिए ये जो बॉक्स हैं ये खोल भी लेता हूँ मैं, ये कम्बल पड़े हुए हैं और कम्बलों के बीच में ये पैसा छुपा कर रखा गया था जिसको पुलिस ने बरामद किया है।
3: अनिल मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव, पूरी गुंडा अगर इन लोग का बात चले तो पूरा अयोध्या अपने अंडर में कर लें। ये सोचते
0: क्या गुंडाई करते,
3: ये गुंडाई ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए हनुमानगढ़ी है, ये चाह जाएँ तो अगर इनका बस नहीं चल रहा वरना हनुमानगढ़ी भी अपने अंडर में कर लें, ट्रस्ट में कर लें। इतनी गुंडाई, अगल बगल जो भी ज़मीन लिए हैं सब रोते हैं, पता जब अब जाके जिसकी ज़मीनें गए उनसे ये पूछा जाए जो पैसा पास हुआ तो वह क्या आपको मिला कि नहीं मिला, जितना आपको मतलब ये उनको पता भी नहीं होगा कि हमारा इतना पैसा बना था।
0: आपने वहाँ पर नौकरी की, कर्मचारियों के साथ किस तरह का बर्ताव था?
3: बहुत अच्छा बर्ताव नहीं है, जो भी अच्छे पद पर सुपरवाइज़र हो या जो भी उनसे सीनियर होते हैं वो सब अच्छा बर्ताव नहीं। फिलहाल कहेंगे वहाँ पे शोषण भी लड़कियों को होता है, जो अच्छे पद पे हैं उनके जितने ट्रस्टी हैं, जितने ट्रस्ट में हैं, जो भी ट्रस्ट का कार्ड पहन के टहलते हैं वो सब उन्हीं के संबंधी हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा या गोपाल राव। और हमें लगता है चंपत जी तो हम नहीं कह सकते, चंपत जी दो तीन बार जब तक हम काम किए दो तीन बार आए हैं तब से हमको नहीं देखे, बट छोटी छोटी चीज़ों पे हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा गोपाल राव और अनिल मिश्रा होता है।
1: That is the most important thing. This should not be an exercise of cover-up. This should not be an exercise to try and put the small fish in the fry, put them behind bars and say everything is all right. Because it is the matter of trust. And as I've been saying, no matter where this investigation leads, any person of the whole Ram Mandir Trust should face the ire. It's their responsibility and the buck stops with them. All right, let's move on to our other top story. There is absolutely no value of life in this country. And I have said this so many times that I am tired of saying this on this very show, because the apathy every single day brings out the system, the way things function in our country, unnecessary loss of life is something that we sort of have gotten used to. And the latest in this chapter is the 11-year-old student who has died in Mumbai because a tree fell on the school bus. It has raised fresh questions over the safety of students, of us, of people in our country, and the enforcement of transportation norms. Maharashtra ministers have now made shocking claims over Vihan's death and have said, who knows when the tree will fall? This is not in our hand. It is in your hand. And Mr. Minister, let me tell you one more thing. It is your apathy, it is the BMC's apathy that has taken Vihan's life. There are certain norms for trees about concretization, about the safety, checking the safety of those trees, checking the life of those trees, you know, how much area around those trees should be left so that water can seep in, their roots get nourishment. All those rules are thrown, you know, out of the window. Nobody cares. When a pavement is made, concretization is done, and the trees do not get oxygen, their roots get weakened, and then issues like these, incidents like these take place. The opposition has come down hard on the Mahajyoti government. Congress leader Nana Patole has alleged that the government is least bothered about public safety, while the Shiv Sena Uddhav Thackeray has demanded strict action against everybody who is responsible for this tragedy. Responding to the criticism, Maharashtra ministers have assured harshest punishment for those found guilty. Yes, it will be some BMC contractor, but the rot is just not in the roots of the tree, but the rot is in the system. And that system keeps taking lives. Vihan is just the new chapter. Vihan is just the new innocent life, 11-year-old. He had his entire life in front of him. Now, BMC will conduct a detailed probe into the matter and promise that action will be taken and nobody will be spared. How many times have we heard this? How many times have these been repeated? nothing changes. Just listen into some reactions.
4: पेड़ गिरना, बिजली गिरना, ये आदमी के हाथ में नहीं है। अब ये पेड़ गिरने वाला ये थोड़ी ना पता रहता है, लेकिन तो भी ऐसे कोई जो धोखादायक है उसको निकालने की जरूर कोशिश
5: करें। लेकिन सर पेड़ गिर ऑडिट तो करना जिम्मेदारी है ना बीएमसी की?
4: ऑडिट तो करते हैं ना
5: सर। वहाँ के लोग आरोप लगा रहे कि हुआ नहीं वहाँ काम।
4: नहीं, ऐसा नहीं होता, काम पूरा होते रहता है। पेड़ गिरना ये नैसर्गिक है, कोई आपत्त हो सकता है, कभी हवा ज्यादा आ जाती है उससे गिर जाता है, लेकिन जो घटना घटी उसके बारे में हमें बेहद दुख है।
6: ऐसे नहीं कि मुंबई में पहली बार बरसात हो रही है, लेकिन पहली बार एक ऐसा शासन बीएमसी में बैठा हुआ है पिछले बहुत सालों के बाद जिसको मुंबई की चिंता नहीं है, लेकिन ढाका में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उस पर ही ज्यादा नजर हमारी महापौर साहिबा की है। और यही बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हम जो पहले से बताते आए थे, हमारे जो एक्सपीरियंस है उनसे बताते आ रहे थे, कोई ना कोई तो सीख ले रास्तों के काम कैसे होने चाहिए, सेफ स्टेज पे कैसे लाते हैं, या ये जो कल की घटना है वो कैसे ना हुए। लेकिन इनका ध्यान पूरा राजनीति कैसे हो, पोलराइजेशन कैसे हो, उसी पे है।
7: इसकी जवाबदारी तो सीधी सीधी सरकार पे जाती है, बीजेपी महायुति की सरकार पे जाती है, बीएमसी में बैठी हुई बीजेपी महायुति की सरकार है उनके ऊपर जाता है। इन्हें जनता का पैसा लूटा है और लोगों को जो सुविधा देना है वो दिया गया नहीं है। यह भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार का परिणाम है कि आज एक निर्दोष बच्चे की जान कल गई है, आज एक व्यक्ति की जान चली गई है, और इसका मतलब है कि ये भ्रष्टाचार इनका अभी सामने आया।
8: बीएमसी की जिम्मेदारी है जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स है या ओपन स्पेसेस है उस पे अगर झाड़ बहुत बढ़ गए हैं तो उसकी छाटनी करते रहना, और प्री मॉनसून स्पेसिफिकली इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाते हैं। अगर इस तरीके की लापरवाही बीएमसी के तरफ से हुई है तो वो छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक, अगर ये जो भी है उसमें कौन कौन दोषी है, कौन किसकी किसकी जिम्मेदारी आती है, किसकी किसकी जवाबदारी ठरवना देना, ये पूर्ण माहिती, मतलब ये पूरी तरीके से एक SIT फॉर्म की जाए। इसके ये झाड़ के ऊपर किसी ने कंप्लेन किया था क्या, कभी इसकी छाटनी हुई भी है क्या, क्या बीएमसी के तरफ से पूरी तरीके से दुर्लक्ष किया गया है, ये पूरी एक जवाबदारी निश्चित करनी पड़ेगी।
1: The same kind of answers, same kind of things will go on till the time another Vihan loses his life, and then we'll again be back to speaking about the same thing. And that tells you how much the people that we choose, the money that we give as our taxes, and we remember BMC is one of the richest municipal bodies in the world, and this is what they give in return. The minister was saying, you know, the tree can fall anywhere. Who can predict that? Well, you can. There are ways of doing that, and there are ways of ensuring that every tree that is in our city is weakened. And what is that? The concretization of the roots. And I want to take you one by one of how this has turned. Also in this case, if you look at the pictures, you will see that the whole area around that tree was concretized. Now, what does concretization of the trees do? It chokes. It completely chokes the trees. So what happens?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों। जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
7: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
6: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।
12: सबका राजा आके और मसाला।
13: Literally go from the man on the outside looking in now to the man on the inside looking out.
14: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
13: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something with no finish line?
14: I would say it prepares the mind more than it prepares the body. I live right next to NDTV in Greater Kailash. In New Delhi.
13: What would the young man in India say if he could see you right now?
14: I'll be up there soon with you.
8: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
10: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
9: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों से सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: Jindal Saathi Seal hai, to asli stainless steel hai.
8: To jab bhi aap stainless steel pipes and tubes khareedein, Jindal Saathi Seal zarur check karein.
7: Jindal Stainless, India's leading producer of stainless steel.

0: Anger and outrage after the death of an 11-year-old boy, Vihan Srivastav, who was killed after a tree fell on his bus. Four other children were injured. The tragedy took place when a tree collapsed onto a school bus in Mumbai's Chembur area, prompting outrage over alleged BMC negligence regarding previously flagged warnings. The tragedy has left Vihan's mother in a state of profound shock and denial, clutching his cricket bat while insisting he needs to play. She is asking for a fair probe. And acting on those words is Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, who has assured that there will be a fair probe and promised aid as officials plan to review the site amidst growing demands for accountability. Meanwhile, BMC has constituted a high-level committee in the matter, and a report will be submitted within 8 days on which accountability will be set. Now, BMC has also suspended Assistant Garden Officer of that area, who was responsible to oversee the civic negligence that was done in the case. Now, NDTV has been refusing to get this story down, and also make a point that these civic apathies are unacceptable in the area and Mumbai out of all. Listen in to what the parents and the family members had to say.
1: भाई छोटे बच्चे की जान गई है कल जिस तरीके से बारिश का हादसा हुआ था तो सरकार सर आप गार्डियन मिनिस्टर है सर क्या कहेंगे सर सर आप गार्डियन मिनिस्टर है मुंबई के बच्चे की कल जान गई है सर
2: सर आप क्या कहना चाहेंगे बीएमसी से
3: बीएमसी से कहेंगे ये लापरवाही का प्रतीक है एक जो पेड़ झुके हुए हैं पुराने हो गए हैं जिनकी डालें बहुत पहले हुई हैं उनको कट कर देना चाहिए
2: और पहले से कंप्लेंट्स था
3: पहले कंप्लेंट था अरे पूरा पेड़ ही हटा देना चाहिए था ऐसा पेड़ जो अपरूटेड हो रहा हो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स कह रहे हैं इस पर पेड़ झुक जाए 60 डिग्री या 70 डिग्री पर अब क्या होगा उसका हाल जरा सा झोंका आया पानी का वजन पड़ा हो
2: अभी फैमिली का क्या हाल है आप ग्रैंडफादर
3: वो अकेला लड़का उनके पास कुछ नहीं उनका तो परिवार चिराग खत्म
4: ही वॉज द ओनली सन
3: मतलब केवल एक ही जो कुछ है संतान लड़का लड़की सब कुछ वही
4: ओनली इशू और ऐसा चला गया इतना होनहार बच्चा था क्या बताएं इसका तो कोई क्षतिपूर्ति किसी धन से भी नहीं हो पाई कितना भी धन करें
2: सर अभी आप कुछ कंप्लेन करेंगे क्रिमिनल एफआईआर रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि ये तो
4: नहीं सोच रहे हैं इस बात पर विचार कर रहे हैं आप लोग भी मीडिया वाले भी इस पर करिए इसको देखिए वो पुत्र तो आ नहीं सकता है सन कैन नॉट कम अगेन बट एटलीस्ट ही शुड बी पेड सूटेबली फॉर द लॉस विच ही सफर्ड उसको टोकन
3: और बच्चे तो सुरक्षित हों
2: जी बिल्कुल एनडीटीवी कैंपेन चला रहे हैं हम लोग
3: यू नो ये कम से कम एक मुहिम चलानी चाहिए पूरे इस प्रकार के पेड़ काटने की गड्ढे अड्ढे हो खुले में और खुले होते हैं उनको बंद करने की ये होनी चाहिए इस पर तमाम घटना
0: Now, the death has raised fresh questions over student safety and the enforcement of transport norms. Maharashtra minister has made a shocking claim over Vihan's death and said, who knows when a tree can fall. This is not in our hand. The opposition has come down heavily on the Mahayuti government. Congress leader Nana Patole alleged that the government is least bothered about public issues while UBT has demanded strict action against everyone responsible for the tragedy. Responding to the criticism, Maharashtra ministers have assured the harshest punishment for those found guilty. He said the BMC will conduct a detailed probe into the incident and promised that no culprit will be spared. Listen in.
5: पेड़ गिरना बिजली गिरना ये आदमी के हाथ में नहीं है अब ये पेड़ गिरने वाला ये थोड़ी ना पता रहता है लेकिन तो भी ऐसे कोई जो धोखादायक है उसको निकालने की जरूर कोशिश
6: लेकिन सर पेड़ गिर ऑडिट तो करना जिम्मेदारी है ना बीएमसी की
5: ऑडिट तो करते हैं ना
6: सर वहाँ के लोग आरोप लगा रहे कि हुआ नहीं वहाँ काम
5: नहीं ऐसा नहीं होता काम पूरा होते रहता है पेड़ गिरना ये नैसर्गिक है कोई आपत्त हो सकता है कभी हवा ज़्यादा आ जाती है उससे गिर जाता है लेकिन जो घटना घटी उसके बारे में हमें बेहद दुख है
7: ऐसे नहीं कि मुंबई में पहली बार बरसात हो रही है लेकिन पहली बार एक ऐसा शासन बीएमसी में बैठा हुआ है पिछले बहुत सालों के बाद जिसको मुंबई की चिंता नहीं है लेकिन ढाका में क्या हो रहा है बांग्लादेश में क्या हो रहा है उस पर ही ज्यादा नजर हमारी महापौर साहिबा की है और यही बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हम जो पहले से बताते आए थे हमारे जो एक्सपीरियंस है उनसे बताते आ रहे थे कोई ना कोई तो सीख ले रास्तों के काम कैसे होने चाहिए सेफ स्टेज पे कैसे लाते हैं या ये जो कल की घटना है वो कैसे ना हुए लेकिन इनका ध्यान पूरा राजनीति कैसे हो पोलराइजेशन कैसे हो उसी पे है
8: इसकी जवाबदारी तो सीधी सीधी सरकार पे जाती है बीजेपी महायुति की सरकार पे जाती है, बीएमसी में बैठी हुई बीजेपी महायुति की सरकार है उनके ऊपर जाता है। इन्हें जनता का पैसा लूटा है और लोगों को जो सुविधा देना है वो दिया गया नहीं है। ये भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार का परिणाम है कि आज एक निर्दोष बच्चे की जान कल गई है, आज एक व्यक्ति की जान चली गई है और इसका मतलब है कि ये भ्रष्टाचार इनका अभी सामने आया।
9: बीएमसी की जिम्मेदारी है जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स है या ओपन स्पेसेस है उस पर अगर झाड़ बहुत बढ़ गए हैं तो उसकी छाटनी करते रहना और प्री मॉनसून स्पेसिफिकली इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाते हैं। अगर इस तरीके की लापरवाही बीएमसी की तरफ से हुई है तो वो छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक अगर ये जो भी है उसमें कौन कौन दोषी है, कौन किसकी किसकी जिम्मेदारी आती है, किसकी किसकी जवाबदारी ठरवना देना ते पूर्ण माहिती, मतलब ये पूरी तरीके से एक SIT फॉर्म की जाए। इसके ये झाड़ के ऊपर किसी ने कंप्लेन किया था क्या, कभी इसकी छाटनी हुई भी है क्या, क्या बीएमसी के तरफ से पूरी तरीके से दुर्लक्ष किया गया है, ये पूरी एक जवाबदारी निश्चित करनी पड़ेगी।
0: Taking a quick break here, but lots more lined up on the other side, so don't go anywhere, keep watching NDTV. Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
10: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
11: Really?
10: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram and trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
12: Literally go from the man on the outside looking in now to the man on the inside looking out.
13: I think that was one of my biggest drivers to become an astronaut.
12: Iron Man, Kokoro, how does that prepare the body for something with no finish line?
13: I would say it prepares the mind more than it prepares the body. I live right next to NDTV in Greater Kailash in New Delhi.
12: What would the young man in India say if he could see you right now?
13: I'll be up there soon with you.
14: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
15: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Hopkins.
14: The show that sets the prime time agenda.
15: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
14: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
16: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
17: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
18: Higher end, check the audio. Higher end, check the audio.
17: Let's do it. Let's start.
19: Breaking story, we're jumping straight into it.
17: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
20: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
17: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
21: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
20: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
17: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
22: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
23: So many attacks.
22: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. and the world's most defining interview.

0: नियंत्रण से कहेंगे ये लापरवाही का प्रतीक है, एक जो पेड़ झुके हुए हैं, पुराने हो गए हैं, जिनकी डालें बहुत पहले हुई हैं, उनको कट कर देना चाहिए।
1: और पहले से कंप्लेंट्स था,
0: पहले कंप्लेंट था,
2: अरे पूरा पेड़ ही हटा देना चाहिए था। ऐसा पेड़ जो अपरूटेड हो रहा हो, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स कह रहे हैं इस पर डाल
0: देना, यूँ झुक जाए 60 डिग्री या 70 डिग्री पर, अब क्या होगा उसका हाल। जरा सा झोंका आया, पानी का वजन पड़ा हो,
1: अभी फैमिली का क्या हाल है? आप ग्रैंडफादर
0: हो, वो अकेला लड़का, उनके पास कुछ नहीं, उनका तो
2: ओनली सन,
0: ओनली 11 साल का लड़का, ओनली एयर्स, मतलब केवल एक ही जो कुछ है संतान, लड़का लड़की सब कुछ वही,
2: ओनली इशू। और ऐसा चला गया, इतना होनहार बच्चा था, क्या बताएं, इसका तो कोई क्षतिपूर्ति किसी धन से भी नहीं हो पाई, कितना भी धन करें।
1: सर, अभी आप कुछ कंप्लेन करेंगे, क्रिमिनल FIR रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये तो
2: नहीं सोच रहे हैं, इस बात पर विचार कर रहे हैं, आप लोग भी मीडिया वाले भी इस पर करिए इसको, देखिए वो पुत्र तो आ नहीं सकता है, सन कैन नॉट कम अगेन, बट एटलीस्ट ही शुड बी पेड सूटेबली फॉर द लॉस विच ही सफर्ड, कुछ तो टोकन।
0: और बच्चे तो सुरक्षित हों
1: जी, बिल्कुल NDTV कैंपेन चला रहे हैं हम लोग,
0: यू नो ये कम से कम एक मुहिम चलानी चाहिए, पूरे पूरे इस प्रकार के पेड़ काटने की, गड्ढे अड्डे हो खुले में और खुले होते हैं उनको बंद करने की, ये होनी चाहिए इस पर तमाम घटना।
3: Now, the death has raised fresh questions over student safety and the enforcement of transport norms. Maharashtra minister has made a shocking claim over Vihan's death and said, who knows when a tree can fall? This is not in our hand. The opposition has come down heavily on the Mahayuti government. Congress leader Nana Patole alleged that the government is least bothered about public issues, while UBT has demanded strict action against everyone responsible for the tragedy. Responding to the criticism, Maharashtra ministers have assured the harshest punishment for those found guilty. He said the BMC will conduct a detailed probe into the incident and promise that no culprit will be spared. Listen in.
4: पेड़ गिरना, बिजली गिरना, ये आदमी के हाथ में नहीं है। अब ये पेड़ गिरने वाला ये थोड़ी ना पता रहता है, लेकिन तो भी ऐसे कोई जो धोखादायक है उसको निकालने की जरूर कोशिश।
5: लेकिन सर, पेड़ गिर ऑडिट तो करना जिम्मेदारी है ना BMC की?
4: ऑडिट तो करते हैं ना
5: सर, वहाँ के लोग आरोप लगा रहे कि हुआ नहीं वहाँ काम।
4: नहीं, ऐसा नहीं होता, काम पूरा होते रहता। पेड़ गिरना ये नैसर्गिक है, कोई आपत हो सकता है, कभी हवा ज़्यादा आ जाती है उससे गिर जाता है, लेकिन जो घटना घटी उसके बारे में हमें बेहद दुख है।
6: ऐसे नहीं कि मुंबई में पहली बार बरसात हो रही है, लेकिन पहली बार एक ऐसा शासन BMC में बैठा हुआ है पिछले बहुत सालों के बाद, जिसको मुंबई की चिंता नहीं है, लेकिन ढाका में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उस पर ही ज्यादा नजर हमारी महापौर साहिबा की है। और यही बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हम जो पहले से बताते आए थे, हमारे जो एक्सपीरियंस है उनसे बताते आ रहे थे, कोई ना कोई तो सीख ले, रास्तों के काम कैसे होने चाहिए, सेफ स्टेज पे कैसे लाते हैं, या ये जो कल की घटना है वो कैसे ना हुए। लेकिन इनका ध्यान पूरा राजनीति कैसे हो, पोलराइजेशन कैसे हो, उसी पे है।
7: इसकी जवाबदारी तो सीधी सीधी सरकार पे जाती है, BJP महायुति की सरकार पे जाती है, BMC में बैठी हुई BJP महायुति की सरकार है उनके ऊपर जाता है। इन्हें जनता का पैसा लूटा है और लोगों को जो सुविधा देना है वो दिया गया नहीं है। यह भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार का परिणाम है कि आज एक निर्दोष बच्चे की जान कल गई है, आज एक व्यक्ति की जान चली गई है, और इसका मतलब है कि ये भ्रष्टाचार इनका अभी सामने आया।
8: BMC की जिम्मेदारी है, जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स है या ओपन स्पेसेस है उस पर अगर झाड़ बहुत बढ़ गए हैं तो उसकी छाटनी करते रहना, और प्री मॉनसून स्पेसिफिकली इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाते हैं। अगर इस तरीके की लापरवाही BMC के तरफ से हुई है तो वो छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक, अगर ये जो भी है उसमें कौन कौन दोषी है, कौन किसकी किसकी जिम्मेदारी आती है, किसकी किसकी जवाबदारी ठरवना देना, ते पूर्ण माहिती, मतलब ये पूरी तरीके से एक SIT फॉर्म की जाए, इसके ये झाड़ के ऊपर किसी ने कंप्लेन किया था क्या, कभी इसकी छाटनी हुई भी है क्या, क्या BMC के तरफ से पूरी तरीके से दुर्लक्ष किया गया है, ये पूरी एक जवाबदारी निश्चित करनी पड़ेगी।
3: Taking a quick break here, but lots more lined up on the other side, so don't go anywhere, keep watching NDTV.
9: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
10: So many attacks.
9: The chaos and cries of disaster zones.

0: बात कुछ नहीं, इनका जब परिवार चिराग खत्म। मतलब केवल एक ही जो कुछ है संतान, लड़का लड़की सब कुछ वही
1: इशू। और ऐसा चला गया, इतना होनहार बच्चा था, क्या बताएं, इसका तो कोई क्षतिपूर्ति किसी धन से भी नहीं हो पाई, कितना भी धन करें।
2: सर, अभी आप कुछ कंप्लेन करेंगे, क्रिमिनल FIR रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये तो
1: नहीं सोच रहे हैं, इस बात पर विचार कर रहे हैं। आप लोग भी मीडिया वाले भी इस पर करिए इसको, देखिए वो पुत्र तो आ नहीं सकता है, सन कैन नॉट कम अगेन, बट एटलीस्ट ही शुड बी पेड सूटेबली फॉर द लॉस विच ही सफर्ड। कुछ तो टोकन
0: और बच्चे तो सुरक्षित हों
2: जी। बिल्कुल, NDTV कैंपेन चला रहे हैं हम लोग,
0: यू नो, ये कम से कम एक मुहिम चलानी चाहिए, पूरे पूरे इस प्रकार के पेड़ काटने की, गड्ढे अड्ढे हो खुले में और खुले होते हैं उनको बंद करने की, ये होनी चाहिए इस पर तमाम बच्चा।
3: Now, the death has raised fresh questions over student safety and the enforcement of transport norms. Maharashtra minister has made a shocking claim over Vihan's death and said, who knows when a tree can fall? This is not in our hand. The opposition has come down heavily on the Mahayuti government. Congress leader Nana Patole alleged that the government is least bothered about public issues, while UBT has demanded strict action against everyone responsible for the tragedy. Responding to the criticism, Maharashtra ministers have assured the harshest punishment for those found guilty. He said the BMC will conduct a detailed probe into the incident and promised that no culprit will be spared. Listen in.
4: पेड़ गिरना, बिजली गिरना, ये आदमी के हाथ में नहीं है। अब ये पेड़ गिरने वाला ये थोड़ी ना पता रहता है, लेकिन तो भी ऐसे कोई जो धोखादायक है उसको निकालने की जरूर कोशिश।
5: लेकिन सर, पेड़ गिर ऑडिट तो करना जिम्मेदारी है ना BMC की?
4: ऑडिट तो करते हैं ना
5: सर, वहाँ के लोग आरोप लगा रहे कि हुआ नहीं वहाँ काम।
4: नहीं, ऐसा नहीं होता, काम पूरा होते रहता है। पेड़ गिरना ये नैसर्गिक है, कोई आपत हो सकता है, कभी हवा ज़्यादा आ जाती है उससे गिर जाता है, लेकिन जो घटना घटी उसके बारे में हमें बेहद दुख है।
6: ऐसे नहीं कि मुंबई में पहली बार बरसात हो रही है, लेकिन पहली बार एक ऐसा शासन BMC में बैठा हुआ है पिछले बहुत सालों के बाद, जिसको मुंबई की चिंता नहीं है, लेकिन ढाका में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उस पर ही ज्यादा नजर हमारी महापौर साहिबा की है। और यही बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हम जो पहले से बताते आए थे, हमारे जो एक्सपीरियंस है उनसे बताते आ रहे थे, कोई ना कोई तो सीख ले, रास्तों के काम कैसे होने चाहिए, सेफ स्टेज पे कैसे लाते हैं, या ये जो कल की घटना है वो कैसे ना हुए। लेकिन इनका ध्यान पूरा राजनीति कैसे हो, पोलराइजेशन कैसे हो, उसी पे है।
7: इसकी जवाबदारी तो सीधी सीधी सरकार पे जाती है, BJP महायुति की सरकार पे जाती है, BMC में बैठी हुई BJP महायुति की सरकार है उनके ऊपर जाता है। इन्हें जनता का पैसा लूटा है और लोगों को जो सुविधा देना है वो दिया गया नहीं है। ये भ्रष्टाचार क्या, भ्रष्टाचार का परिणाम है कि आज एक निर्दोष बच्चे की जान कल गई है, आज एक व्यक्ति की जान चली गई है, और इसका मतलब है कि ये भ्रष्टाचार इनका अभी सामने आया।
8: BMC की जिम्मेदारी है, जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स है या ओपन स्पेसेस है उस पर अगर झाड़ बहुत बढ़ गए हैं तो उसकी छाटनी करते रहना, और प्री मॉनसून स्पेसिफिकली इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाते हैं। अगर इस तरीके की लापरवाही BMC की तरफ से हुई है तो वो छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक, अगर ये जो भी है उसमें कौन कौन दोषी है, कौन किसकी किसकी जिम्मेदारी आती है, किसकी किसकी जवाबदारी ठरवना देना, ते पूर्ण माहिती, मतलब ये पूरी तरीके से एक SIT फॉर्म की जाए, इसके ये झाड़ के ऊपर किसी ने कंप्लेन किया था क्या, कभी इसकी छाटनी हुई भी है क्या, क्या BMC के तरफ से पूरी तरीके से दुर्लक्ष किया गया है, ये पूरी एक जवाबदारी निश्चित करनी पड़ेगी।
3: Taking a quick break here, but lots more lined up on the other side, so don't go anywhere, keep watching NDTV.
9: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
10: So many attacks.
9: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
10: It's incredible.
9: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
10: Welcome to Left, Right, and Center.
9: Hard facts.
10: War-struck country.
9: Hard questions.
10: In the Ukraine.
9: 30 years of trust.
11: In the Kargil area.
10: North Ukraine.
12: In France. In Italy.
10: At Srinagar.
12: I am in France.
10: Vishnu Shom for NDTV.
9: Vishnu Shom. only on NDTV. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
11: This location from Tel Aviv
9: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
12: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
13: The Ayatollah Khamenei is gone.
14: There has been a missile attack right behind you.
15: And we need to rush into a shelter.
16: Heading there.
17: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
9: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.

0: Vijay government. But the DMK has now retorted and said that they are going to challenge this in court. They are currently mulling to move towards court towards these accusations by the TVK. DMK says that these allegations are baseless and demerit of any proof. My colleague Vijay stays with me for more details. But before going towards Vijay, let's also listen in to what the DMK had to say.
1: What is the use of having one MLA towards DMK? What is the purpose of it? Why should we involve in horse trading if we are not going to form the government? Horse trading is required by you because you have formed the government by the support of other MLAs and you need some more MLAs on your own. Why should we involve in horse trading when there is no need for us to do that? Why should we spend money on a thing? Because anybody, even one MLA comes towards us, he has to resign his post and come. What purpose it is going to serve to DMK?
0: And my colleague Vijay Gopal stays with me with more details. So Vijay, is there a plot to destabilize the Vijay government?
2: There are big allegations from TVK, especially from TVK MLA from Krishnagiri district, where he had claimed that he was approached by a few members who were all backed by former DMK minister V. Sendil Balaji and his brother Ashok, where they offered him 35 crore rupee to vote against the speaker whenever the no confidence motion brought in assembly against the TVK government legislative assembly speaker. But however, he refused to do so and filed complaint with police official. Following the probe, police also have arrested three accused. They also said that he had given a confession saying that they are all connected to former minister Sendil Balaji, for which only DMK has responded saying that these allegations by TVK are politically motivated and DMK all set to fight case legally and prove allegations are false. They also question why the bribery case is being investigated by police but not by DVSC department. They also said the legal procedures mandatory legal procedures were violated in those arrests. But however, TVK continues to argue saying that not only one MLA, more than 40 MLAs for past 40 days have been approached by the DMK to topple the TVK government. But DMK calls these are all conspiracy theories to divert attention from real issues. But war of words intensified between TVK and DMK. The timing of these incidents are very crucial because next week, TVK Chief Minister Vijay also to visit Karur.
0: Right.
2: TVK also targets V. Sendil Balaji, who is in charge for DMK for Karur district. So the timing...
0: Right.
2: And we have to wait and see how this goes develop.
0: Absolutely. Thank you so much, Vijay, for these details. Shifting our focus now to the TMC versus TMC drama, where West Bengal leader of opposition Ritha Pratap Banerjee will be meeting the election commission. Now, this meeting will be done with a delegation of TMC rebel faction, and including in this meeting will be several leaders who defected from the TMC as a separate faction. Now, remember, this is key as on June 22nd, a meeting was held of the rebel faction, and now these details will be given to the Election Commission. They will also seek follow-up action on the request made in their earlier representation and their meeting to the EC. Let's also listen in to the West Bengal Leader of Opposition, Ritha Pratap Banerjee.
3: Last month's 22nd tarikh, Kolkata mein All India Trinamool Congress ka special session hua tha. To special session mein jo nirnay hua, chairperson chune gaye, National Working Committee chuna gaya, to hum sab likh ke जो जो डॉक्यूमेंट्स है इलेक्शन कमीशन को भेज दिए थे और तभी इलेक्शन कमीशन से समय मांगे थे कि पूरी जो बेंच है फुल इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच के साथ अपॉइंटमेंट का. तो हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि कल फुल बेंच हम लोगों को 10 आदमी को अपॉइंटमेंट दिए हैं. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरमैन अरूप राय का नेतृत्व में हम सब लोग आए हैं. कल जाएंगे इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच से मिलेंगे और हमारा जो बात है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे.
0: Ritik, while we understand that the rebel faction wants their demands to be accepted by the EC, what does the TMC, the Mamata faction, has to say?
2: Well, Mamata Banerjee's faction is only watching, but as per the leaders of this, Mamata faction or the Kalighat Trimbol, so far it is being known since the debacle has happened, they are continuously denying the presence of this rebel group. They said they cannot, according to the party's rule, there cannot be another faction or anybody cannot claim that as Trinamool Congress Party. Tomorrow is a big day when this rebel faction led by Rituprasad Bandyopadhyay and others, they have already landed at the national capital. They are given time to meet the full bench of Election Commission tomorrow at 12-ish in the national capital. But what we do understand that it would be a difficult task for the Mamata Banerjee and her supporters and also the leftover party leaders, that to save the party symbol as well as party's the ownership. What we know that the Rituprasad Banerjee and the newly formed National Executive Committee, they are going to put before the Election Commission claiming the ownership of the party. So the only way left for the Trinamool Congress to head to court, it would be interesting to see whether they would move before the court with regard to this matter tomorrow. Back to you.
0: Absolutely. Thank you so much, Ritik, for those inputs. Anger and outrage after the death of an 11-year-old boy, Vihan Srivastav, who was killed after a tree fell on his bus. Four other children were injured. The tragedy took place when a tree collapsed onto a school bus in Mumbai's Chembur area, prompting outrage over alleged BMC negligence regarding previously flagged warnings. The tragedy has left Vihan's mother in a state of profound shock and denial, clutching his cricket bat while insisting he needs to play. She is asking for a fair probe. And acting on those words is Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, who has assured that there will be a fair probe and promised aid as officials plan to review the site amidst growing demands for accountability. Meanwhile, BMC has constituted a high-level committee in the matter, and a report will be submitted within 8 days on which accountability will be set. Now, BMC has also suspended Assistant Garden Officer of that area, who was responsible to oversee the civic negligence that was done in the case. Now, NDTV has been refusing to get this story down and also make a point that these civic apathies are unacceptable in the area and Mumbai out of all. Listen in to what the parents and the family members had to say.
4: भाई छोटे बच्चे की जान गई है कल जिस तरीके से बारिश का हादसा हुआ था तो सरकार सर आप गार्डियन मिनिस्टर है सर क्या कहेंगे सर सर आप गार्डियन मिनिस्टर है मुंबई के बच्चे की कल जान गई है सर
5: सर आप क्या कहना चाहेंगे बीएमसी से
6: बीएमसी से कहेंगे ये लापरवाही का प्रतीक है एक जो पेड़ झुके हुए हैं पुराने हो गए हैं जिनकी डालें बहुत पहले हुई हैं उनको कट कर देना चाहिए
5: और पहले से कंप्लेंट्स था
6: पहले कंप्लेंट था अरे पूरा पेड़ ही हटा देना चाहिए था ऐसा पेड़ जो अपरूटेड हो रहा हो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स कह रहे हैं इस पर
7: यहाँ झुक जाए 60 डिग्री या 70 डिग्री पर अब क्या होगा उसका हाल जरा सा झोंका आया पानी का वजन पड़ा हो
5: अभी फैमिली का क्या हाल है आप ग्रैंडफादर हो
7: वो अकेला लड़का उनके पास कुछ नहीं उनका तो परिवार चिराग खत्म
6: ही वॉज द ओनली सन
7: मतलब केवल एक ही जो कुछ है संतान लड़का लड़की सब कुछ वही
6: ओनली इशू और ऐसा चला गया इतना होनहार बच्चा था क्या बताएं इसका तो कोई क्षतिपूर्ति किसी धन से भी नहीं हो पाई कितना भी धन करें
5: सर अभी आप कुछ कंप्लेन करेंगे क्रिमिनल एफआईआर रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि ये तो
6: नहीं सोच रहे हैं इस बात पर विचार कर रहे हैं आप लोग भी मीडिया वाले भी इस पर करिए इसको देखिए वो पुत्र तो आ नहीं सकता है सन कैन नॉट कम अगेन बट एटलीस्ट ही शुड बी पेड सूटेबली फॉर द लॉस व्हिच ही सफर्ड उसको टोकन
7: और बच्चे तो सुरक्षित हों
5: जी बिल्कुल एनडीटीवी कैंपेन चला रहे हैं हम लोग यू नो
7: ये कम से कम एक मुहिम चलानी चाहिए पूरे पूरे इस प्रकार के पेड़ काटने की गड्ढे अड्डे हो खुले में खुले होते हैं उनको बंद करने की ये होनी चाहिए इस पर तमाम घटना
0: Now, the death has raised fresh questions over student safety and the enforcement of transport norms. Maharashtra minister has made a shocking claim over Vihan's death and said, who knows when a tree can fall. This is not in our hand. The opposition has come down heavily on the Mahayuti government. Congress leader Nana Patole alleged that the government is least bothered about public issues, while UBT has demanded strict action against everyone responsible for the tragedy. Responding to the criticism, Maharashtra ministers have assured the harshest punishment for those found guilty. He said the BMC will conduct a detailed probe into the incident and promise that no culprit will be spared. Listen in.
8: पेड़ गिरना, बिजली गिरना, ये आदमी के हाथ में नहीं है। अब ये पेड़ गिरने वाला ये थोड़ी ना पता रहता है, लेकिन तो भी ऐसे कोई जो धोखादायक है उसको निकालने की जरूर कोशिश
9: करें। लेकिन सर पेड़ गिर ऑडिट तो करना जिम्मेदारी है ना बीएमसी की?
8: ऑडिट तो करते हैं ना
9: सर। वहाँ के लोग आरोप लगा रहे कि हुआ नहीं वहाँ काम।
8: नहीं, ऐसा नहीं होता, काम पूरा होते रहता है। पेड़ गिरना ये नैसर्गिक है, कोई आपत हो सकता है, कभी हवा ज़्यादा आ जाती है उससे गिर जाता है, लेकिन जो घटना घटी उसके बारे में हमें बेहद दुख है।
10: ऐसे नहीं कि मुंबई में पहली बार बरसात हो रही है, लेकिन पहली बार एक ऐसा शासन बीएमसी में बैठा हुआ है पिछले बहुत सालों के बाद जिसको मुंबई की चिंता नहीं है, लेकिन ढाका में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उस पर ही ज्यादा नजर हमारी महापौर साहिबा की है। और यही बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हम जो पहले से बताते आए थे, हमारे जो एक्सपीरियंस है उनसे बताते आ रहे थे, कोई ना कोई तो सीख ले रास्तों के काम कैसे होने चाहिए, सेफ स्टेज पे कैसे लाते हैं, या ये जो कल की घटना है वो कैसे ना हुए। लेकिन इनका ध्यान पूरा राजनीति कैसे हो, पोलराइजेशन कैसे हो, उसी पे है।
11: इसकी जवाबदारी तो सीधी सीधी सरकार पे जाती है, बीजेपी महायुति की सरकार पे जाती है, बीएमसी में बैठी हुई बीजेपी महायुति की सरकार है उनके ऊपर जाता है। इन्हें जनता का पैसा लूटा है और लोगों को जो सुविधा देना है वो दिया गया नहीं है। ये भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार का परिणाम है कि आज एक निर्दोष बच्चे की जान कल गई है, आज एक व्यक्ति की जान चली गई है, और इसका मतलब है कि ये भ्रष्टाचार इनका अभी सामने आया।
12: बीएमसी की जिम्मेदारी है जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स है या ओपन स्पेसेस है उस पर अगर झाड़ बहुत बढ़ गए हैं तो उसकी छाटनी करते रहना, और प्री मॉनसून स्पेसिफिकली इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाते हैं। अगर इस तरीके की लापरवाही बीएमसी की तरफ से हुई है तो वो छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक, अगर ये जो भी है उसमें कौन कौन दोषी है, कौन किसकी किसकी जिम्मेदारी आती है, किसकी किसकी जवाबदारी ठरवना देना, ते पूर्ण माहिती, मतलब ये पूरी तरीके से एक SIT फॉर्म की जाए, इसके ये झाड़ के ऊपर किसी ने कंप्लेन किया था क्या, कभी इसकी छाटनी हुई भी है क्या, क्या बीएमसी की तरफ से पूरी तरीके से दुर्लक्ष किया गया है, ये पूरी एक जवाबदारी निश्चित करनी पड़ेगी।
0: Taking a quick break here, but lots more lined up on the other side, so don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: ऑडिट तो करना जिम्मेदारी है ना बीएमसी की?
1: ऑडिट तो करते हैं ना
0: सर। वहाँ के लोग आरोप लगा रहे कि हुआ नहीं वहाँ काम।
1: नहीं, ऐसा नहीं होता, काम पूरा होते रहता। पेड़ गिरना ये नैसर्गिक है, कोई आपत्त हो सकता है, कभी हवा ज्यादा आ जाती है उससे गिर जाता है, लेकिन जो घटना घटी उसके बारे में हमें बेहद दुख है।
2: ऐसे नहीं कि मुंबई में पहली बार बरसात हो रही है, लेकिन पहली बार एक ऐसा शासन बीएमसी में बैठा हुआ है पिछले बहुत सालों के बाद जिसको मुंबई की चिंता नहीं है, लेकिन ढाका में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उस पर ही ज्यादा नजर हमारी महापौर साहिबा की है। और यही बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हम जो पहले से बताते आए थे, हमारे जो एक्सपीरियंस है उनसे बताते आ रहे थे, कोई ना कोई तो सीख ले रास्तों के काम कैसे होने चाहिए, सेफ स्टेज पे कैसे लाते हैं, या ये जो कल की घटना है वो कैसे ना हुए। लेकिन इनका ध्यान पूरा राजनीति कैसे हो, पोलराइजेशन कैसे हो, उसी पे है।
3: इसकी जवाबदारी तो सीधी सीधी सरकार पे जाती है, बीजेपी महायुति की सरकार पे जाती है, बीएमसी में बैठी हुई बीजेपी महायुति की सरकार है उनके ऊपर जाता है। इन्हें जनता का पैसा लूटा है और लोगों को जो सुविधा देना है वो दिया गया नहीं है। ये भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार का परिणाम है कि आज एक निर्दोष बच्चे की जान कल गई है, आज एक व्यक्ति की जान चली गई है, और इसका मतलब है कि ये भ्रष्टाचार इनका अभी सामने आया।
4: बीएमसी की जिम्मेदारी है जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स है या ओपन स्पेसेस है उस पर अगर झाड़ बहुत बढ़ गए हैं तो उसकी छाटनी करते रहना, और प्री मॉनसून स्पेसिफिकली इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाते हैं। अगर इस तरीके की लापरवाही बीएमसी की तरफ से हुई है तो वो छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक, अगर ये जो भी है उसमें कौन कौन दोषी है, कौन किसकी किसकी जिम्मेदारी आती है, किसकी किसकी जवाबदारी ठरवना देना, ते पूर्ण माहिती, मतलब ये पूरी तरीके से एक SIT फॉर्म की जाए, इसके ये झाड़ के ऊपर किसी ने कंप्लेन किया था क्या, कभी इसकी छाटनी हुई भी है क्या, क्या बीएमसी की तरफ से पूरी तरीके से दुर्लक्ष किया गया है, ये पूरी एक जवाबदारी निश्चित करनी पड़ेगी।
5: Taking a quick break here, but lots more lined up on the other side, so don't go anywhere, keep watching NDTV.